नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: más. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से ठीक थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 301। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग चौथा आज प्रसारित किया जाएगा। इसका कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 से सुनेगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज 44वां भाग प्रसारित किया जाएगा इस श्रृंखला का। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकारी। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता ऋषि कपूर पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 से सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, संवादक हैं ममता सिंह, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। सुबह 11 और रात्रि 11 से सुनेगा रंग तरंग, दिन में 12:05 से आपको सुनवाएंगे यादों की महफिल सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से। दोपहर 2 आपको सुनवाएंगे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसका 44वां भाग आज प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे।

हेलो सहेली, ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से। संपादक हैं सोनाली पाठक, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने। शाम 5:30 से शाम 6:35 से सुनिएगा संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। इसके अंतर्गत फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रकर की बातचीत का 9वां भाग प्रसारित किया जाएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका हीरों का हार, लेखन रमेश उपाध्याय का, निर्देशन सत्येंद्र शरत का। रात 8:15 से चित्रलोक। रात 9 बजे से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। आलेखन स्वर जी श्याम का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेखन स्वर पूजा नारायणिया का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। रात 10:30 से ढलती जाए रात। और रात 11 बजे से रंग तरंग।

भगवान शिव, शंख और चंद्रमा की सी कांति वाले, काल के समान भयानक सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रिय, काशीपति, कल्याणकारी कल्पवृक्ष, गुणों की राशि और कामदेव को भस्म करने वाले हैं, जो सत्कर्मियों को अत्यंत दुर्लभ मुक्ति दे डालते हैं। इन देवाधिदेव महादेव से तुलसीदास जी ने अपने कल्याण के विस्तार की मंगल कामना की है। सागर तट पर वानर सेना समुद्र लांघने को तत्पर खड़ी है। श्री राम अपने सहयोगियों से पूछते हैं, अब विलंब क्यों हो रहा है? जामवंत तथा हनुमान प्रभु रामचंद्र की महिमा का बखान करते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आपका फिर एक बार स्वागत है। और स्वागत है जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की विशेषताओं की बात हो रही है, हम ये जो गायकी है किराना घराने की उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आज कौन सी विशेषता है इस घराने की जिस पर आप हमें जानकारी देंगी?
2: श्रुति का जो हम सूक्ष्म और सटीक ऐसा प्रयोग करते हैं घराने में,
1: जी जी,
2: एकदम सूक्ष्म अंतर। श्रुति मालूम है आपको ना, दो स्वरों के बीच में
1: जी
2: जो स्वर जो हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते ऐसे जिस स्वर रहते,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: उसे हम श्रुति कहते हैं
1: जी।
2: सा और रे उसके बीच में, वैसे तो 22 श्रुति मानी गई है,
1: हाँ।
2: सारे गम पधनी,
1: हाँ।
2: उसमें लेकिन असंख्य है श्रुतियाँ
1: जी जी।
2: ये नियमित रियाज और स्वर साधना उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: वैसे तो सब घराने में दिया जाता है, लेकिन किराना घराने का जो रियाज है,
1: हाँ।
2: उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है। तो फिर श्रुति का सूक्ष्म और सटीक प्रयोग,
1: हाँ।
2: इसके बारे में हम बोल रहे थे कि नियमित रियाज को स्वर स्थिर मधुर और प्रभावशाली बनता है
1: जी।
2: फिर श्रुति के सूक्ष्म अंतर की पहचान विकसित की जाती है, इससे गायन में गहराई

0: सूक्ष्म और सटीक प्रयोग,
1: हाँ
0: इसके बारे में हम बोल रहे थे कि नियमित रियाज को स्वर स्थिर, मधुर और प्रभावशाली बनता है।
1: जी
0: फिर श्रुति के सूक्ष्म अंतर की पहचान विकसित की जाती है, इससे गायन में गहराई

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर। और इस बंदिश को सुनने के बाद राग अहिर भौरव पर आधारित विजेता फिल्म का गीत याद आ रहा है,
1: वाह क्या बात है,
0: जो आशा भोसले जी और सत्यशील देशपांडे के स्वरों में। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तक

तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एक कृष्ण भजन से, जिसे हमने लिया है नरसिंह भगत फिल्म से। हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डिकिया, आवाजें गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा इसे और रवि का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में छोटी बहू फिल्म का गाना। इंदिवर ने लिखा इसे और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।
4: हम

0: कृत कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं संत कवित्री मीराबाई की पारंपरिक रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है पंडित रविशंकर ने। फिल्म का नाम है मीरा और आवाज़ है वाणी जयराम की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में नास्तिक फिल्म का गाना, कवि प्रदीप की रचना है और सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया है इसे।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त की आवाज में दो भाई फिल्म से राजा मेहदी अली खां के शब्द हैं और तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में मिस मैरी फिल्म के गाने के साथ। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में कभी कभी फिल्म का गाना।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आइए अब सुना जाए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खेल खेल में। इस फिल्म का गाना गुलशन बावरा हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में कर्ज फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की

0: एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
5: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म से। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
6: अच्छा मैं कहती हूँ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरी मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 4161616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे

0: शारीरिक जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
2: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी

0: धूमधाम से मनाया जा रहा है।
1: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: खाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हों तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है। क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
0: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया था। उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा दिया जाए, इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।
0: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
2: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी, वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आह्वान किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधी जी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण वंदे मातरम गाकर सुनाया था और उसके बाद शास्त्रीय गायन में बड़ी निपुणता प्राप्त

0: आकर मात्र 17 वर्ष की आयु में संगीत सुधाकर ये संगीत की प्रतिष्ठित उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
1: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया था। हिंदू महासभा और कांग्रेस जैसी सभी विचारधाराओं के अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया जाता था। खनकदार फिर भी विलक्षण मधुर आवाज, अभ्यासपूर्ण और भावरसपूर्ण गायकी के कारण उनका वंदे मातरम लोकप्रिय हो गया।

0: 1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे। आखिर वार्डन ने ही ये पिटाई रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने आधी बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगर पालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ यह संपूर्ण देश भर में एकमात्र गठबंधन था।

0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए के फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

चित्रलोक सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत बहुआयामी है। वे बाल कृष्ण के रूप में निश्चल आनंद, गोपाल के रूप में प्रकृति और लोक जीवन से जुड़ाव, श्री राधा के साथ प्रेम के प्रतीक और महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में ज्ञान एवं कर्तव्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक कृष्ण भजन से, जिसे हमने लिया है बॉलीवुड और हॉलीवुड इस फिल्म से। सौम्या ने गाया इसे, गीतकार हैं सौम्या और संगीतकार हैं संदीप चौटा।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। इन संदेशों के पहले आपने जो गीत सुना वो हमने लिया था पी से प्यार एफ से फरार फिल्म से, जिसे गाया था पंडित रोशन लाल वर्मा और साथियों ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में कृष्ण और कंस। इस फिल्म का गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है शांतनु मोइत्रा ने।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं पहले यह संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज दादा भाई नेहरू जी का जन्म दिवस है। दादा भाई नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान राष्ट्रवादियों में थे जिन्होंने अपने विचारों, तर्कों और राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। दादा भाई नेहरू जी मूलतः शिक्षाविद, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीयों में आधुनिक शिक्षा और राजनीतिक चेतना के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में प्रमुख थे। दादा भाई नेहरू जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी था। उन्होंने प्रमाणों और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बताया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपदा को विभिन्न माध्यमों से इंग्लैंड ले जा रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने भारत की गरीबी के वास्तविक कारणों को सामने रखा। उनका स्पष्ट मत था कि भारत की निर्धनता भारतीयों की अक्षमता का परिणाम नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था का दुष्परिणाम है। आपका निधन 30 जून 1917 को हुआ। दादा भाई नेहरू जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है मणिकर्णिका फिल्म से।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तरुण सागर, एलिसा मेंडोसा और लॉय मेंडोसा की आवाज़ों में हाउसफुल का गाना। और अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज़।

दोस्तों आज 4 सितंबर है, आज है ऋषि कपूर जी का जन्मदिवस। हालांकि भौतिक रूप से वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। ऋषि कपूर जी एक सदाबहार अभिनेता थे और सिने जगत में सदा प्रासंगिक रहे थे और रहेंगे भी। तो चलिए उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और अमिताभ बच्चन ने संगीतबद्ध किया है इस गाने को।

0: Yo.
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

पड़ी लगे आए हाय।

अभी आप सुन रहे थे सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस है। वे अपने सुरीले संगीत के लिए जाने जाते थे और उनका संगीत सुरीला भी होता था और अनूठा भी। आइए उनकी ही फिल्म का एक गाना सुनते हैं, आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का गाना। आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकलसन और शशि ने गाया इसे। समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, वो आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में गदर 2 फिल्म से सईद कादरी के है बोल और मिथुन की है तर्ज़।

श्रोताओं, गदर टू फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजतपट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे, आपके मन में रजतपट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: फिर भी रहेंगी निशानियां।
1: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: एक कस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था 70 में, 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो उन्होंने बोला तुम जा दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया और मैंने वो बोला मैंने ये जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे। वहाँ मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
1: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
2: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानो में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिम्पल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था? डिम्पल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे अब जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिम्पल की थी, डिम्पल वाज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिम्पल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।

कमाल की बात यह भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए, आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना।

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

0: जमाने से क्या।
1: ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में बंध गए।

बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग।

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था।

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

ये कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिंपल हूं, नीतू सिंह हूं या टीना मुनीम।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचे

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूं, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ, तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए, आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल रहा है वो, जाओ तुम लोग सब जाओ यहां से, जाओ जाओ। कहलेन से मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है, जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे, दफा कर सबको।
0: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
2: हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यही मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोगे ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छा

0: आप क्या है और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, आप तो बेहतरीन करें, बेहतर करें। ऐसे वो करूँगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर हूँ मैं, करूँगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना ना करके उसको नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ ऐसे, देखो मैंने, उन्होंने हार नहीं मानी। एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आप ये आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूँ और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलोगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूँ कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं निभा लूँगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप। तो मैं एक्चुअली सही मानो में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी कि देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ सीन्स भी सुनाएंगे। फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं, देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूँ कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है।
1: लाला मेरा नाम है, रौफ लाला, ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी।
0: तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा।
2: साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं।
0: एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं चलो, वो एक फोन करना था।
3: अब मैं से कोई सौदा करने वाला दिखता है?
0: अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से।
3: अगर ये बात झूठ है, खुदा की कसम मैं यहाँ पे गोली मारूंगा।
4: वली तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है।
2: इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की। 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म दो दूनी चार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: दोस्तों विविद भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर, मैहर से बात कर रहे हैं।
0: मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सकें?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए फिर ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा जितेंद्र
0: नाम आपका?
1: भाई, जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है मेरी तरफ।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस
1: क्या मैडम,
0: अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से आपसे बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य
0: साक्य। अच्छा, बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है? और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहां पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है। जी,
0: तो
1: समय के
0: आप,
1: अनुसार धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते हैं अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है
1: जी,
0: जी। बताइए, गानों के शौकीन हैं, गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा? बताइए फिर, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह।
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: बिल्कुल।
0: जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने
1: जी
0: बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए, पानी
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख
1: की कमी।
0: जाएंगी।
1: अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं,
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते तो बर्तन में, ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते, ज्यादा वेस्ट धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में
0: जी
1: भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता है तो बहुत गुस्साती चिल्ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल। और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर।
1: जी
0: और आपका काम
1: जी
0: काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, हम बुखार आ गया था, और आवाज भी ऐसी हो रही बहुत मुश्किल से निकल रही।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया। तो आवाज
1: अच्छा
0: में तो
1: अच्छा
0: कोई समस्या नहीं दिख रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया,
0: हाँ,
1: बढ़िया। अभी तो
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए?
1: मैडम फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल हैं आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी। ठीक
0: पांडुरंग जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगाफाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे खिचड़ी
0: जी जी जरूर।
1: का।
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल।
1: खासियत बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: तो किसी विशेष दिन बनती है
1: हाँ
0: क्या ये खिचड़ी की रोज खाई जाती है?
1: नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगाफाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ही ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वादु भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है, तो
1: हाँ
0: है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ नाश्ते में खिचड़ी मिलती, खिचड़ी और
0: हाँ,
1: भजिया मिलता है
0: तो
1: और
0: बना भी
1: कढ़ी साथ
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं किराए को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ, होटल है, होटल है वारंगा
0: अच्छा,
1: फाटा में, होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का। वैसे
1: तभी भी
0: जी
1: मिलेगा खिचड़ी
0: जी
1: नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहां की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए
1: हाँ
0: बड़ा अच्छा
1: हाँ
0: लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है, रोटी कपड़ा मकान में का
0: हाँ,
1: महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई।

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन
1: जी
0: कहाँ से
1: सुनिए
0: बोल रहे
1: मैडम
0: हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो
1: जी।
0: हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ। जी
0: सतीश गुलियानी
1: जी जी
0: जी, तो बताइए
1: हाँ जी,
0: वहां के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है।
0: क्या
1: बाकी
0: बात है।
1: घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ,
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले भटूरे,
0: अच्छा
1: छोले
0: अच्छा
1: भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ जी हाँ
0: जी,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी
1: हाँ
0: गीत
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: मैडम,
0: होते हैं।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक लाइन है,
0: हाँ
1: ओ पेके जान वाली है हाय नी किन्ना, ओए होय नी किन्ना, हाय नी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा,
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, ऐसी बात
0: अच्छा,
1: नहीं।
0: आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: जी जी जी जी
0: और अपने
1: जी
0: बारे में
1: सर,
0: बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है,
0: अच्छा।
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी
1: सैर
0: जी
1: करो,
0: बिल्कुल
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने
1: वो
0: माता
1: उसके
0: पिता की
1: बाद आ
0: सेवा
1: जा,
0: करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम। मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए,
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ
0: तो
1: जी तो
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी
1: बस
0: कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।

0: जी,
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहां पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहां ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में ही, वापस नहीं जाएंगे हम।
0: जी। बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: संघर्ष किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी।
1: शूटिंग में जाता था, मुझे लाइट उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा,
1: तो
0: वाह
1: फिर
0: वे,
1: मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू वीरू देवगन के पिताजी हैं, उनके साथ।
0: अच्छा।
1: तो बात खास सुनी हो गई एक दिन रात को, जरा सी बात पे कि मैं बिना बताए उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ तो, यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10-10 वर्कर काम करते थे, तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहां मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी, अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता,
0: इसमें दो
1: नहीं तो वो।
0: बातें हैं। कई बार क्या होता है, बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहां नहीं रहना चाहते हैं, तो ये आपने अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत
1: सारी
0: पसंद
1: फिल्म
0: है?
1: देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम मैंने, बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत
0: क्या
1: फिल्में
0: बात
1: देखी
0: है। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: है। इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में, आकाशवाणी बिना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का
1: हाँ
0: गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और
1: शुक्रिया
0: इतनी
1: शुक्रिया
0: सारी बातें
1: मैडम जी,
0: साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे हैं इज्जत फिल्म का ये गाना।
2: ये

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी,
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने

0: होता है आप तो।
1: जी हाँ जी हाँ, देखिए मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी, ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल, बहुत बहुत
0: बताइए
1: धन्यवाद मैडम जी। ऐसा
0: क्या काम काज है
1: है,
0: आपका, हमारे श्रोताओं को
1: हाँ
0: बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में
1: जी
0: जाने।
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं टेलिंग शॉप है मेरा करोड़ रायपुर में मोहन जय के नाम से है, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन ने फैशन डिजाइनर है,
0: अच्छी बात है,
1: और
0: क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब ये करते रहते हैं। और उसके बाद जो है कि देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है,
0: जी,
1: तो वो सब हम एक साथ सब काम करते रहते हैं। और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं
1: जी,
0: और
1: बिल्कुल
0: उस
1: बिल्कुल
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने।
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह
0: अच्छा।
1: वो वर्कशॉप में रहते हैं तो कोई रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं, रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी।
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है, और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है, और उनका जो बाल रूप में हर एक बात में नटखट जो होता है ना, वो बहुत ही
0: नटखट
1: अच्छा
0: रूप।
1: लगता है मैडम जी।
0: जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने। कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुद्दार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।
2: अरे मच गया शोर।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम पगला फिल्म है पगला कहीं का, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे ये गाना सुनना चाहिए।
0: जी, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है। ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी।
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: तुम

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश मैम,
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम,
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सेन मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम?
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब
0: और
1: वगैरह है देखने के लिए, अच्छी है जगह, बने हैं बढ़िया है। कमला
0: जी
1: पार्क है
0: जी
1: जी मैम।
0: और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम, दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं
1: है।
0: आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: ठीक है।
0: फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ
0: हाँ
1: पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहां के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ हाँ
0: खास हो गया ना
1: मैडम,
0: आपका
1: हाँ
0: शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियां पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: में
0: जाती हैं।
1: मैडम बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है ये।
1: यहाँ पर एसएससी या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियां पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन
1: मैम
0: किया।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ मैं

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से, मैं आपको नीम श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं? सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी ही खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनामर्ग, दूध पथरी है ना,
0: हाँ
1: बड़गामा के साइड में दूध
0: जी।
1: पथरी।
0: तो इस समय वहां पर मौसम कैसा है? ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी,
0: जी।
1: नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम
1: हाँ
0: है
1: जी, बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहां पर?
1: जी।
0: खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहां की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी यहाँ, इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल
1: हाँ,
0: उपजती है ज्यादातर?
1: यहाँ पे ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो
1: यहाँ
0: आप
1: 3 फुट,
0: लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे।
0: जम जाता है बर्फ, और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ,
0: बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद?

0: पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर वन, इसका दूसरे रिकॉर्ड है कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है,
1: हाँ
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी, और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर वन फिल्म का ये गाना।

0: भी सुनना बहुत पसंद है।
1: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
0: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के खंचार और बम्बे टॉकीज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैडम हमको दीवाना कर गए का डायग्राम
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662, यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, यानी 28670288।

0: 8 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
2: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि यही मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाड़ली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में

मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवल पढ़ती रहती। और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ। कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते, वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती है।

उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ, नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदल कर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली। अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी

सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा, दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया, देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की

बेटी बहू माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

जन्माष्टमी की शाम ही कुछ ऐसी होती है कि मन अपने आप खुश हो जाता है, चारों तरफ रोशनी, मंदिरों में बजते भजन, कृष्ण जी के जयकारे और घरों में बनता प्रसाद, और अगर साथ में दोस्त हो तो इस शाम की बात ही अलग होती है। दोस्तों के साथ मिलकर सजावट करना, कान्हा की झांकी देखना, प्रसाद खाना और फिर छोटी छोटी बातों पर खूब हंसना, ये सारे पल दिल में बस जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, दोस्तों के साथ बिताई ऐसी शाम हमें फिर से बचपन वाली खुशी दे जाती है। जन्माष्टमी की खुशी और दोस्तों का साथ सच में एक यादगार मेल है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर, रानी राजश्री। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और इस पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। खुशियों और सौहार्द के साथ आप सभी इस त्योहार को मनाएं और खुश रहें। दोस्तों, जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि उभर आती है। हाथ में बांसुरी, सिर पर मोर पंख और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन जन्माष्टमी सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि यह हमें उनके जीवन, उनके विचारों को समझने का अवसर भी देती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपना धैर्य और अपना साहस बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब चारों ओर भय और अन्याय का माहौल था, लेकिन कृष्ण ने आगे चलकर लोगों को प्रेम, न्याय, साहस और कर्म का रास्ता दिखाया। कृष्ण की सबसे बड़ी सीखों में से एक है अपने कर्म पर ध्यान देना। जीवन में हमें कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कभी सफलता नहीं मिलती तो कभी असफलता सामने आती है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय ईमानदारी से अपना काम करते रहना बेहद जरूरी है। यही भावना आज के युवाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। कृष्ण की बाल लीलाओं में हमें जीवन का आनंद और सरलता दिखाई देती है। दोस्तों के साथ उनका

अपनापन हमें बताता है कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास कितना जरूरी है। वहीं महाभारत के प्रसंगों में उनका व्यक्तित्व हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी मनाने का तरीका भी बदल रहा है। मंदिरों की सजावट, झांकियां, भजन और दही हांडी जैसे आयोजन उत्सव को खास बनाते हैं, लेकिन इस पर्व की असली खुशी तभी है जब हम कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में भी उतारें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बने, अपने माता पिता का सम्मान करें और गलत के खिलाफ सही बात के साथ खड़े हमेशा रहें। और ये सारी चीजें कृष्ण को याद करने का एक बेहद सुंदर तरीका है। दोस्तों, आज के युवा अगर कृष्ण की तरह परिस्थितियों से घबराने के बजाय समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो वे अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मुस्कुराना मत छोड़िए, लेकिन अपने कर्तव्य से भी पीछे बिल्कुल मत हटिए। इस जन्माष्टमी हम सिर्फ उत्सव न मनाएं दोस्तों, बल्कि अपने भीतर प्रेम, करुणा, साहस और कर्म की भावना को भी जगाएं, और यही कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी।

0: दोस्तों चलिए कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं ये वार्ता जिसका विषय है राजनीति के अग्रदूत दादा भाई नौरोजी। वार्ताकार हैं अंकिता विश्वकर्मा।
1: दोस्तों नमस्कार, आज हम सभी दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्र पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल क्रांतिकारी आंदोलन या जेल यात्राओं का इतिहास ही नहीं है, बल्कि यह विचारों की क्रांति का भी इतिहास है। जिन लोगों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों पर गहराई से विचार करके जनता को जागृत किया, उनमें दादा भाई नौरोजी का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। दोस्तों अब हम उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बंबई में हुआ। वे पारसी परिवार से थे। उनके पिता का नाम नौरोजी पालनजे और माता का नाम मनबाई था। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया, किंतु माता ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी का संस्कार दिया। नौरोजी ने शिक्षा में असाधारण प्रतिभा दिखाई। वे गणित और अंग्रेजी विषय में दक्ष थे। आगे चलकर उन्होंने एल्फिनस्टन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं गणित और प्राकृतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने। दोस्तों आइए अब हम चर्चा करते हैं दादा भाई नौरोजी की शिक्षा और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के बारे में। दादा भाई नौरोजी केवल राजनीतिक तक ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा को भी महत्व दिया। वे स्त्रियों की शिक्षा और समाज में समानता के पक्षधर थे। उन्होंने बंबई में कई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में योगदान दिया। दोस्तों दादा भाई सिर्फ भारत में ही नहीं इंग्लैंड की राजनीति का भी हिस्सा रहे थे। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में प्रवेश किया। वे 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से फिशम्बरी से चुनाव जीतकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। वहां उन्होंने भारत की समस्याओं को ब्रिटिश शासकों के सामने जोरदार तरीके से रखा। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, भारत को आप केवल लूटने का साधन न समझे, बल्कि वहां की जनता को भी न्याय और समान अवसर दें। आइए दोस्तों दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान उनके आर्थिक विचार ही हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत से धन की निकासी कर रहा है। भारत का कर, भारत का उत्पादन, भारत का श्रम सब अंग्रेजों के हित में उपयोग हो रहा है। भारतीय संसाधनों से अंग्रेजों की समृद्धि बढ़ रही है और भारत दरिद्र हो रहा है। उन्होंने गणनाओं द्वारा सिद्ध किया कि भारत से हर साल करोड़ों रुपए इंग्लैंड भेजे जा रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने भारतवासियों को झकझोर दिया। दोस्तों अब नौरोजी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी भूमिका क्या रही है उसके बारे में जानते हैं। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब दादा भाई नौरोजी उसके प्रमुख स्तंभ बने। वे तीन बार यानी सन 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार स्वराज का नारा दिया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान की भावना जगाई। दोस्तों दादा भाई ने किसी प्रकार सुधार और जागरण किया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में भारतवासियों के अधिकारों की पैरवी की। वे भारतीय उद्योग, शिक्षा और स्वशासन के समर्थक थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की प्रगति केवल आत्मनिर्भरता और स्वराज से ही संभव है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के व्यक्तित्व और विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे। दादा भाई नौरोजी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, सौम्य और आदर्शवादी था। वे सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के मार्ग पर चलते थे। उनकी वाणी में तर्क, उनकी लेखनी में प्रमाण और उनके जीवन में आदर्श झलकता था। राष्ट्र के लिए उनका त्याग और तपस्या ने उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन बना दिया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी कहाँ तक सीमित थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। यद्यपि नौरोजी जी के विचार क्रांतिकारी थे, किंतु वे नरम दल के नेता माने जाते थे। उनकी नीति धीमे धीमे सुधार पाने की थी। कुछ क्रांतिकारी उन्हें बहुत उदार समझते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने ही राष्ट्रवाद की नींव रखी, जिस पर आगे बाल गंगाधर तिलक, गांधी और अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता की इमारत खड़ी की। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी का अंतिम समय कैसा था, आइए हम सब जानते हैं। दादा भाई नौरोजी का निधन 30 जून 1917 को हुआ। भारत ने अपना वह महान सपूत खो दिया जिसने सबसे पहले अपना ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक शोषण नीति को उजागर किया और भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि वे स्वशासन के अधिकारी हैं। दादा भाई नौरोजी का जीवन भारत की स्वतंत्रता यात्रा का प्रथम चरण है। उन्होंने ज्ञान, तर्क और शोध से अंग्रेजों को आईना दिखाया और भारतवासियों को आत्मबल प्रदान किया। उनके द्वारा प्रतिपादित ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आज भी अर्थशास्त्र में अध्ययन का विषय है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही भारतीयों ने यह ठान लिया कि स्वतंत्रता ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में वे उस दीपशिखा की तरह हैं जिसने अंधकार में रास्ता दिखाया। हम सब मिलकर दादा भाई नौरोजी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं।
0: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था राजनीति के

0: अग्रदूत दादाभाई नौरोजी, वार्ताकार थी अंकिता विश्वकर्मा।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
0: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
3: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
3: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
3: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
3: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा, जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
3: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
0: दोस्तों, किसी इंसान के लिए दुनिया को अपनी आंखों से देख पाना कितना अनमोल है, इसका एहसास शायद हमें तब होता है जब कोई व्यक्ति रोशनी के लिए तरसता है। हमारे लिए सुबह की पहली किरण, अपनों का चेहरा, प्रकृति के रंग और किताब के अक्षर देखना रोजमर्रा की सामान्य बात है, लेकिन किसी नेत्रहीन व्यक्ति के लिए यही चीजें एक सपना हो सकती हैं। ऐसे में नेत्रदान किसी के जीवन में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद और आत्मविश्वास भी ला सकता है। दोस्तों, नेत्रदान का मतलब हमारे जाने के बाद हमारी आंखों के उपयोगी हिस्से किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सके जिसे दृष्टि की जरूरत है। यह सोच अपने आप में बेहद खूबसूरत है कि हमारे जीवन समाप्त होने के बाद भी हमारी आंखें किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में उजाला ला सकता है। और यही वजह है कि नेत्रदान को एक महान मानवीय संकल्प माना जाता है। दोस्तों, अक्सर लोग नेत्रदान को लेकर कई तरह की गलतफहमियों में रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसे शरीर की सामान्य प्रक्रिया या अंतिम संस्कार में परेशानी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेत्रदान एक निर्धारित चिकित्सीय प्रक्रिया के तहत किया जाता है, इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी लेना और किसी विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्था या नेत्र बैंक से जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। युवा खुद जागरूक होने के साथ साथ अपने परिवार, दोस्तों और समाज में भी नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। सोशल मीडिया पर सही जानकारी साझा करें, जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लें और लोगों को मिथकों के बजाय तथ्य समझाकर एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेत्रदान हमें इंसानियत का अर्थ समझाता है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ अपने लिए करते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के जीवन

में रोशनी देने का संकल्प अपने आप में बेहद खास है। जरूरी नहीं कि हम किसी को जानते हों तभी उसकी मदद करें। सच्ची संवेदना तो तब है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन को बेहतर बनाने की सोच रखें। नेत्रदान का संकल्प एक ऐसी विरासत है दोस्तों, जो किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में नई शुरुआत कर सकती है। इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी लें, परिवार से बातचीत करें और यदि हम इसके पात्र हों तो विधिवत संकल्प लेने पर विचार करें। हमारी आंखों की रोशनी भले ही हमारे जीवन का हिस्सा हो, लेकिन सही प्रक्रिया और सहमति के जरिए यही रोशनी किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन सकती है। दोस्तों, पानी हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें पानी की जरूरत न पड़ती हो। खाना बनाने से लेकर खेती, सफाई और उद्योगों तक हर जगह पानी हमारी जिंदगी का आधार है। फिर भी हम अक्सर पानी को इतनी आसानी से बहा देते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि पानी सीमित है और आने वाले समय में इसकी कमी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, जल संचयन का मतलब सिर्फ बारिश का पानी किसी टंकी में जमा करना नहीं है। इसका मतलब है कि पानी की हर बूंद को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना। बारिश के मौसम में छतों से बहने वाले पानी को पाइप के जरिए टंकी या जमीन के अंदर पहुंचाया जा सकता है। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, गांवों में तालाब, पोखर या फिर छोटे जलाशयों को बचाना भी जल संचयन का बहुत अच्छा तरीका है। हम अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, नल खुला छोड़ने की आदत को हम बदल लें, जरूरत से ज्यादा पानी बिल्कुल न खर्च करें और जहां भी संभव हो इस्तेमाल किए गए पानी का दोबारा उपयोग करें। अगर घर में कोई नल टपक रहा हो तो उसे ठीक करवाना भी पानी बचाने का एक छोटा लेकिन बेहद अहम कदम है। दोस्तों, युवाओं की भूमिका इसमें सबसे खास हो सकती है। युवा सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पानी बचाने के आसान तरीकों के बारे में बता सकते हैं। अपने आसपास के तालाबों और जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण में भी युवा भाग ले सकते हैं और अपनी भागीदारी दे सकते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पानी की समस्या केवल सरकार की समस्या नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज हम पानी की एक एक बूंद की कीमत समझेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। आखिर जल है तो जीवन है, इसलिए पानी बचाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलने का संकल्प है। आज बचाई गई हर बूंद कल किसी की जिंदगी बचाने का कारण बन सकती है।

दोस्तों, चलते चलते एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ, जो कि समय की कीमत क्या मायने रखती है हमें सिखाता है, विचार है समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें, जिसका अर्थ है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इंसान को हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना। तो अपनी रेडियो हमसफर रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 FM पर। शाम के 5:30 और 46 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुने ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बहन लोगन, आज के दिन बड़ा सुहावन बा, मन के अति भावन बा। काहे कि आज गोकुल में कृष्ण जन्मलन और सारा जग अंजोर हो गई। बहन लोगन, अब तो आप लोग समझ ही चुकल हैयन कि आज ना कोनो नियम कानून ना कोनो योजना परियोजना के बात हुई। काहे कि आज तो पूछा मत, का लड़का का सयान सब कृष्ण में मगन बा, भक्तिमय माहौल बा। बहन लोगन, हर पर्व का पूजा पर बहन लोगन तैयार हो जालिन, मंदिर जालिन पूजा करे। पर आज कान्हा के जन्मोत्सव मनावे खातिर हर घर ही मंदिर के तरह सजल बा। बहन लोगन, देखा है हम सब अपन जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए आगे बढ़ ही ला जा, तब परिस्थिति और जब परिस्थितियां अनुकूल होवेला, तब मन खुशी खुशी चुनौती स्वीकार करते हुए कदम आगे बढ़ावेला। बाकी जब कभी प्रतिकूल यानी विषम परिस्थिति होवेला, तो हर डर के बाद भी आत्मा में एक विश्वास रहेला कि कदम आगे रखें ऊपर वाला के नाम लेके। बहन लोगन, जैसन कि हम लोग शुरू में ही बात करत रह लीजा कि आज मुरली मनोहर बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव मनावल जात बा, तो काहे ना हम लोगन आपन बैठकी के एक यही तरह के गीत के साथ आगे बढ़ावल जाए।

बहन लोगन देखा, आज हम कहले रही ना कि बढ़िया दिन बा, और बढ़िया दिन बा तब मन एकदम खुश करके मन सायन के साथ आगे बढ़ल जाए। और देखा ए मौके पर एक सुंदर मन मनसायन उहो फिल्म के गीत सुने के मिलल। बहन लोगन देखा कहल जाला ना कि भगवान हर जगह नाही मौजूद रही हैं, यही से वो भगवान के रूप में माँ बनौलन। कोनो भी बच्चा केहू भी जन्म के समय, जन्म से तत्काल मतलब बिना एक क्षण गंवाए जब धरती पर अवतरित होलन तो उनके मुंह से लोग तो कहलन कि बचपन रोवेलन के हाँ, मगर हकीकत ही रहला कि बच्चा ही बोलेला कि कहाँ, कि मतलब हम कहाँ आ गए ले। और जब बच्चा के पहला प्रश्न होला कहाँ, और भूख से वो कहाँ रोवत रहलन, तो उनके आपन सबसे पहला जौन स्पर्श मिलेला,

0: भूख तृप्त करे खाती अस्तन मिलेला, वो महतारी के ही होला। तो कौनो भी बचवा के जौन प्रथम जरूरत के पूर्ति करता जे होला वो उनकर महतारी होलिन। और माँ यही से कहल जाला ना कि माँ के दर्जा ईश्वर के समान होवेला। बहन लोगन ऐसन बा कि बचपन के जब दूध के बात होत बा तो यही समय हमके एक और बात पर चर्चा करे के मन होत बा कि माँ के दूध अमृत के समान होला। ऐसन काहे कहल जाला? एकरे पीछे कारण ई बा कि प्रसव के बाद माता के स्तन से निकले वाला पीला गाढ़ा जौन स्राव होला, दूध होला, वो बचपन खातिर कई रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़े का शक्ति प्रदान करेला। और न केवल जन्म के समय ही, शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में ही, बल्कि जीवन भर वो दूध के प्रभाव देखे के मिलेला। बचपन के अनेक प्रकार के रोग से प्रतिरोधी क्षमता से युक्त होवेला। तब जौन भी बहिन लोगन मातारी बने के सौभाग्य प्राप्त करत हैं तो वो कभी भी ये दूध से अपने बचवा के वंचित ना रखें। बहन लोगन धरती पर अगर केहू भगवान के बराबरी कर सकेला तो वो हवन माता पिता। और देखो धरती पर हर व्यक्ति हमार प्रतियोगी होवेला, प्रतिस्पर्धा में के भाव रखेला, मगर पिता के अलावा सिर्फ गुरु के ही बा ऐसन भाव जे अपने बचवा के अपने से आगे बढ़े के शिक्षा देवेलन। तो कौनो भी बचवा के समुचित विकास में गुरुजन के कितना महत्व बा, कितना सम्मानपूर्ण स्थान रखे के चाहिए, यही सब पर चर्चा करे खातिर हमार बतासा बहन पहुँचल हैं। एक गुरु माँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संघ मित्रा जी के पास, और चर्चा भी यही तरह के करत हैं कि गुरुजनों का हमारे जीवन में महत्व। हम कहब कि आवाज सुनल जाए, मगर ऐसे पहले कुछ संदेश भी सुन लिहल जाए।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, शिक्षक दिवस शिक्षक और छात्र के जीवन में सबसे यादगार दिनों में से एक है। ये महत्वपूर्ण दिन शिक्षकों और छात्रों के बीच में रिश्ते को मनाने और आनंद लेने का एक शानदार अवसर है। अपने आकाशवाणी स्टूडियो में एक शिक्षक यानी डॉक्टर संघ मित्रा जी को आमंत्रित किया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में। तो चलिए आज उनसे कुछ बातों को साझा कर जानते हैं और समझते हैं। तो डॉक्टर संघ मित्रा जी नमस्कार।
4: नमस्ते मैडम।
3: साथ ही आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: डॉक्टर संघ मित्रा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको अध्यापन कार्य से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
4: जी, मैं अध्यापन की क्रिया में अपने ही शिक्षकों के माध्यम से आई हूँ
3: जी।
4: उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है और एज अ शिक्षक उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, हर पद पे उन्होंने मेरा साथ दिया है
3: जी।
4: और उसी से आज मैं प्रेरित होकर एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ।
3: क्या बात है। संगमित्रा जी, शिक्षक दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है?
4: ये देखिए, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं
3: जी।
4: और इसकी शुरुआत 5 सितंबर 1962 से हुई थी।
3: अच्छा।
4: इसको मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और उन्हें धन्यवाद कर सकें हमें एक व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए।
3: संगमित्रा जी, देखें पहले और अब की शिक्षा में बहुत बदलाव आ चुका है।
4: हाँ जी।
3: शिक्षक और शिक्षण पद्धति में देखा जाए तो बहुत ही अंतर है। ये मुझे महसूस होता है कि कल और आज में बहुत ही अंतर है। कल का जो पढ़ना लिखना था, पढ़ने लिखने का जो तरीका था, वो बहुत ही अंतर है। और आज कंप्यूटर का जमाना हो गया है, मोबाइल का जमाना हो गया है, तो इसका प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, आप क्या इसको महसूस करती हैं?

0: दोनों जैसे बिकाऊ से हो गए हैं। आज देखें, ज्ञान हो या फिर कोई हुनर हो या ना हो, पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन ये देखने में आता है कि पैसा लेने के चक्कर में शिक्षक ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन सच्चे मन से जो पढ़ाना होता है शिक्षक का, जो छात्र के प्रति उनकी भावना होती है, वो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक योग्य शिक्षक होने के लिए क्या गुण होने चाहिए।
1: देखिए, क्या है कि एक शिक्षक जो है समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होता है और उसके ऊपर एक राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के जो गुण है वो है धैर्य और समर्पण। अगर आपके अंदर धैर्य और समर्पण की भावना नहीं है तो शायद ये जिम्मेदारी आप पूरी तरीके से नहीं निभा पाएंगे। इसको कह सकते हैं पेशेंस एंड डेडिकेशन। अगर आप अपने कर्म के प्रति पेशेंस नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तो शायद आप अपने बच्चों को भी उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। इसके लिए धैर्य का
1: और समर्पण का होना बहुत जरूरी है।
0: जी जी, देखिए संगमित्रा जी, आप भी बखूबी जानती हैं कि शिक्षक या गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, पर आज जैसे शिक्षक और शिष्य के रिश्ते में जैसे दूरी सी आ गई है
1: जी।
0: आज शिक्षक का महत्व शिष्य की नजरों में पहले जैसा नहीं देखने को मिलता है, तो इसकी क्या वजह मानती हैं आप?
1: देखिए मैम, इसकी वजह तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो हमने तकनीकी माध्यमों का जो यूज हो गया है उसको थोड़ा हम इसके जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि बच्चे अब मोबाइल और लैपटॉप में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अब वो टीचर के पास जाना नहीं चाहते। वो हर चीज सोचते हैं गूगल कर लेंगे, उनको मिल जाएगा
0: सब कुछ। हाँ, बैठे बिठाए उनको ज्ञान।
1: देखिए, कहते हैं किसी हर चीज का एक अपना मेरिट और डिमेरिट होता है। हाँ, अब मोबाइल आपको दिया गया है पढ़ाई करने के लिए, अब आप उसके अत्यधिक सेवन उसका करेंगे, यूज करेंगे उसका, तो वो आप ही के लिए घातक है।
0: बिल्कुल, आपको नुकसान है।
1: हाँ, आप ही को नुकसान है। तो हर चीज मोबाइल पे नहीं अवेलेबल होती है।
0: बिल्कुल,
1: आपको अपने शिक्षक की जरूरत होती है। जहां आप फंसेंगे, जहां आपकी समस्या है, तो हर चीज गूगल आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता।
0: जी,
1: तो ये चीज एक है, एक बहुत बड़ा इसका डिमेरिट की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का, कि जो तकनीकी माध्यमों से बच्चे उस पर निर्भर हो गए हैं और वो शिक्षकों से दूर होते जा रहे हैं, वो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है।
0: इसका अच्छा प्रभाव पड़े इसलिए शिक्षक को शिष्य से जुड़ा होना चाहिए और विद्यार्थी को अपने शिक्षक से जुड़ा होना चाहिए। जो भी समस्या हो पढ़ने लिखने के मामले में, जो भी समस्या है, तो वो शिक्षक से संपर्क करके तब वो जाने और समझे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे संगमित्रा जी कि शिक्षा को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी की तरफ से क्या प्रयास होना चाहिए?
1: जी देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे एक कक्षा में कई तरीके के बच्चे आते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ का थिंकिंग पावर अच्छा होता है, कुछ का थोड़ा कम होता है, कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो ऐसे में अगर शिक्षक ही उनसे भेदभाव करने लगेगा तो फिर विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही दुष्परिणाम होगा इसका। इस वजह से एक सकारात्मक सामूहिक और सामाजिक वातावरण का निर्माण होना चाहिए कक्षा में, और सभी बच्चों को समान गति विधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षकों को, और सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए और एक सकारात्मक अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए, ताकि सभी बच्चे आपस में मिलकर काम करें और आगे बढ़ें। और ये विद्यार्थी से भी अपेक्षा रहती है कि वो अपने सहपाठियों की मदद करें और एक समूह में अपना काम एक दूसरे के साथ अच्छे से करें।
0: जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और देखें, इस बात को सुन करके मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है, जो दुनिया भर में देखें 10 में से 6 बच्चे गणित का विषय कहें या फिर कोई अन्य विषय कहें, उनमें योग्यता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये भी बात है कि जो माता पिता हैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के जो बनाना चाहते हैं, उनकी जो खुद की इच्छा है, और बच्चा उनके अनुसार नहीं कर पाता है, तो उनसे जो माता पिता हैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, जो दूसरे बच्चों की तुलना करते हैं, तो कहाँ तक ठीक है ऐसा करना, ये आपको क्या लगता है?
1: जी देखिए, माता पिता का अपने बच्चों की तुलना किसी और से करना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी ही सोचने और समझने की क्षमता होती है।
0: हर बच्चे की अलग होती
1: है, मानसिकता होती है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है, किसी का इंटरेस्ट खेल कूद में है, किसी का पढ़ाई में है। तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चों पे अपनी आशाएं थोपेंगे तो फिर उनके अंदर, या तो आप दूसरे बच्चे से तुलना करेंगे तो उनके अंदर हीन भावना जागेगी, और अगर हीन भावना रहेगी तो उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, जो कि आपके बच्चे के लिए ही ठीक नहीं है, नुकसानदेह है।
0: और सही कहा आपने कि कुछ बच्चों की जो रुचि होती है वो खेलने कूदने में भी होती है, लेकिन जो खेलते कूदते हैं बच्चे, तो माता पिता को लगता है कि खेल कूद रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। और पहले का कहावत यही था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो

0: आज का जो माहौल है बिल्कुल अलग हो गया है। आज के खेलकूद के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम रखा
1: जी। और देखिए जब से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके तहत बच्चों को वही करने दिया जाए जो उनका मन है, उसके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें कर रही है ताकि बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार विषय ले सकें और उसमें आगे बढ़ सकें।
0: बिल्कुल, जो उनकी रुचि होगी उसके अनुसार वो अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसकी तरफ वो ध्यान देंगे तो
1: वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे,
0: ज्यादा ही अच्छा कर पाएंगे। जी जी सनी मित्रा जी, देखें बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें आपसे जानने को मिली। अच्छा, चलते चलते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते?
1: जी मैं यही कहूंगी कि देखिए शिक्षा का मानव जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है
0: जी,
1: ठीक। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य में ज्ञान का प्रसार होता है। ये एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई आपसे छीन सकता
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उस समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षित ना हो, और इसके लिए मैं सभी शिक्षकों से ये आशा करती हूँ कि वे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे।
0: जी तो श्रोताओं, आज हमारे साथ थी डॉक्टर संगमित्रा जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में। श्रोताओं, जिस तरह से अर्जुन के पास द्रोणाचार्य थे, स्वामी विवेकानंद जी के पास रामकृष्ण थे, उसी तरह दुनिया के प्रत्येक शिक्षक होते हैं जो बच्चों और युवा लोगों को सीखने और उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शिक्षक भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। हमें हर साल एक दिन धन्यवाद कहने के लिए अवश्य निकालना चाहिए, चाहे दुनिया में हम कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, हमारे लिए शिक्षक बहुत मायने रखते हैं। तो सभी शिक्षकों को ये दो लाइन कहना चाहेंगे कि अंधकार को सदा मिटाकर ज्ञान का दीप जलाते हैं, अंधकार को सदा मिटाकर ज्ञान का दीप जलाते हैं, शिक्षक ही वो मणि है जो सत्य की राह दिखाते हैं। और डॉक्टर संगमित्रा जी, आपको भी इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे श्रद्धा भाव से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: जी धन्यवाद।
2: बहन लोगन, देखा कितना अच्छा बात होत रहा ला कि शिक्षा कैसे कोनो बचवन के भविष्य के बनावेलन, मगर एकरे खातिर जरूरी बा कि बचवा भी वही लगन और सपन समर्पण के भाव से अपने शिक्षक के बतावल मार्ग पर चलें। देखा जैसन कि हम लोग आज चर्चा करत ही जाए कि शिक्षक दिवस मनावल जाला। शिक्षक दिवस बेशक 365 दिन में मात्र एक दिन 5 सितंबर के मनावल जाला, तो पहले हम लोग जान लिहल जाए कि ये काहे मनावल जाला। तो असल में हमारे देश के दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और दार्शनिक पहले रहलन, ओकरे बाद वो हमारे देश के दूसरा राष्ट्रपति और पहला उपराष्ट्रपति बनलन। ऐसे उनके जन्म के, उनके जयंती के शिक्षक दिवस के रूप में मनावल जाला। कहल जाला ना कि जे चल गईल वो चल गईल, मगर उनकर व्यक्तित्व और कृतित्व आज हम सबके कितना लोगों के प्रेरणा स्वरूप बा, और एक ऐसन प्रेरक के अगर अपने जीवन में लेके अपन जीवन में आगे बढ़ल जाए तो निश्चित रूप से हर छात्र छात्रा के भविष्य उज्जवल और जरूर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वयं ये बात के कहले रहलन कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व का बात हुई और सम्मान के बात हुई। काहे कि हम तो शिक्षक के रूप में जौन योगदान देली तो देली, मगर हर शिक्षक खातिर एक दिन होए के चाहिए जौने दिन उनके सम्मान में वो दिवस के मनावल जाए। तो ये बहुत बढ़िया बात बा और उन्हीं के विनम्र भावना और शिक्षक के प्रति असीम आदर के देखते हुए 1962 से हर साल 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के रूप में मनावे का परंपरा शुरू भइल, और कल 5 सितंबर बा ए दिवस के फिर एक बार मनावल जाई। तो हर बचपन के अपने शिक्षक के प्रति आदर रखते हुए ए दिवस में अपने शिक्षक के प्रति आदर सम्मान रखे के चाही। और डॉक्टर संघमित्रा जवन बतैलिन कि शिक्षा कैसे हमारे जीवन के बढ़िया बनावेला

अच्छा बनावेला, मंगलमय बनावेला, उनके भी धन्यवाद दिहल जाए। और चूंकि बैठकी में हम लोगन हई, तो बैठकी के रिवाज के हिसाब से धन्यवाद एक मन मनसायन से होला, तो काहे ना एक और फिल्म के गीत हो जाए।

बहन लोगन देखा मन मनसायन भी हो गई, और देखा एक बड़ी अच्छी बात बा, सुनल भी जाला कि जाकी रही भावना जैसी ना। एकर मतलब यह होला कि हम लोगन के मन में यदि परोपकार के भावना बा, सदाचार के भावना बा, तो समझा हमारे साथ एक अलौकिक शक्ति हमेशा हमार साथ रहेला, और विश्वास रहेला कि हमार हाथ अगर केहू के मदद खातिर आगे बढ़ रहा बा तो निश्चित रूप से

0: हमहुँ के केहू मदद करी तो यही बात बतकही के साथ बैठकी के दिहल जाए विराम। चलत चलावत सब बहन लोगन के राम राम।
1: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:59 और 42 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। प्रदेश भर में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनावल जा रहा हौ। मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का खास तैयारी कैल गई हौ। भगवान कृष्ण का जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के साथ ही सज्जो मंदिर के आकर्षक ढंग से सजावल गई बा। एगो रिपोर्ट।
1: ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा श्री की जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन की स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रदेव मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। इस बीच आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया और कृष्ण भक्तों का स्वागत कर रहे उन्हें शुभकामनाएं दी। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव में शामिल भइले। वहां के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में विधि विधान से दर्शन और पूजन कैले। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि सरकार आस्था का सम्मान करत सुविधा बढ़ौले त मथुरा और वृंदावन आवे वाला श्रद्धालुओं का संख्या हर साल बढ़त गई। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में आज आधी रात भगवान कृष्ण के प्राकट्य के लिए के खास अनुष्ठान कैल जाये।
2: गांव में गोवर्धन में अब उनके हर वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। जन्मभूमि के साथ साथ वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में, बरसाना में, नंदगांव में, गोवर्धन में अब उनके लिए उसी प्रकार की सुविधा को और विकसित करने की तैयारियां। हमने कहा जितना हो सकता है करिए, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ फीस नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी सुविधा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी भावनाओं को समझने वाली सरकारें हैं।
0: मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में आज आधी रात भगवान कृष्ण के प्राकट्य के लिए के खास अनुष्ठान कई जाई। ओजा भव्य श्री कृष्ण जन्म उत्सव के देखे बदे दुनिया भर से लोग मथुरा पहुंचल हवे। ओजा बनारस, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिला में श्री कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनावल जा रहा हौ। भगवान कृष्ण का लीला से जुड़ल झांकी लोगिन के आकर्षण का खास केंद्र बनी रहा हौ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्म उत्सव समारोह में आज देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल हुई है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एगो औरियो बढ़न सफलता हासिल कैले हौ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज उतर के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिया से देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 के सफल प्रक्षेपण कैलस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के ये उपलब्धि पर कहले कि ये देश खातिर गर्व का क्षण हौ। ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ी रहल क्षमता के दिखावेला। केंद्रीय

0: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये उपलब्धि बदे इसरो की टीम के बधाई दियाले हुए। इसरो का अध्यक्ष वी नारायणन कहले कि ई मिशन भारत के पृथ्वी अवलोकन क्षमता के और यो मजबूत करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर बिहाने गोरखपुर में प्रदेश के 81 गो शिक्षक के राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करी हैं। राज्य स्तरीय ये पुरस्कार बदे बेसिक शिक्षा विभाग का 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग का 20 गो शिक्षक का चयन कैल गैल हौ। पुरस्कार पावे वाला ये शिक्षक लोग के प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के सतही राज्य सरकार 25,000 रूपया का धनराशि यो दे। प्रदेश के कई गो जिला में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। आज प्रदेश के मध्य और पूर्वी इलाका के कई गो जिला में बरखा के नाते तापमान में गिरावट दर्ज कैल गई। मौसम विभाग अगला 2 दिन ले प्रदेश के कई गो इलाका में भारी बरखा का चेतावनी जारी कैले हवे। ये बीचे बरखा और बैराजन से पानी छोड़ने के नाते करीब 10 गो नदी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ से प्रभावित इलाकन में बढ़हन स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी बा। ओहर बनारस में गंगा और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटे लागल बा। चित्रकूट में बाढ़ का पानी हट गईले के बाद प्रशासन सड़किन का सफाई अभियान शुरू कैले हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार राजकुमारी पत्नी राम वृक्ष भारती निवासी ग्राम कुल डोमरी टोला बिरन बहरा थाना अनपरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 2 जून 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा और इकहरा बदन है। पहनावा लाल बैगनी रंग की साड़ी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए जान लेते हैं हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

रात्रि 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा श्री द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आंखों देखा हाल। रात 11:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम। ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, ये आप सुनेंगे रात्रि 10:00। प्रस्तुति होगी हीना कौशर की और प्रस्तुतकर्ता होंगे सचिन कुमार वर्मा। रात्रि 9:30 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम करंट अफेयर्स। कुछ पुराने फिल्मी नगमे हम लेकर के आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के तहत रात 9:15 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत पेश किया जाएगा रात 8:00। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम लोकगीत ये आप सुनेंगे शाम 7:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे नंद किशोर व साथियों की आवाज में खेमटा, छत्तीसगढ़ी और छपरहिया। शाम के 6:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम, क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, शाम के 6:50 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। तो ये थी जानकारी हमारे आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 और 6 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुने ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। गौरी भौजी, बड़ा देखत है कि आज जन्माष्टमी का समय चल रहा बा। और जन्माष्टमी पे देखत है कि मार लड्डू उड्डू गठिया के चल आवत हो और सबके जन्म बांटत भी हो।
1: देखा अचलू भैया, इतना बरखा बुन्नी होखला के बावजूद भी हमन का पंचायती भी एकदम समय से शुरू हो गेल बा।
0: बिल्कुल।
1: आज जैसा आप कहला हाँ कि लड्डू बांटत हो, तो आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनावल जाता है। आज सब मंदिर में एकदम धूमधाम से पूरा उत्सव की तैयारी है। मंदिर सजावट भइल है,
0: बिल्कुल।
1: झालर से रंग बिरंगा खूब लाइट से रोशनी कर जाता है। सब भक्तगण लोग व्रत रखल हुआ और दर्शन पूजन करे जाते हुआ। तो
0: तो
1: आज
0: इसने में
1: तो
0: कहीं
1: जब
0: मतलब कहीं न कहीं ठहरे के जन योजना तो बनवले हुई है, कहीं भी जाए का मंदिर उन्दिर जाए का, कहीं न कहीं प्रोग्राम तो
1: अचलो
0: बनवले हुई
1: भैया,
0: है।
1: अचलो भैया, आज तो हमके लगा था कि सबका मनसा हो, आपों का मनसा हो
0: बिल्कुल
1: कि हम
0: बिल्कुल।
1: लोग अपने लड्डू गोपाल का माने कृष्ण भगवान का दर्शन
0: दर्शन
1: पूजन
0: करके आ
1: करे,
0: रहे हैं। बिल्कुल
1: झांकी देखे निकलल जा, और
0: बिल्कुल।
1: मंदिर मंदिर दर्शन करत करत हम लोग प्रणाम करत पैर छुअत। आ कुछ लोग तो देखे जन्म तक बैठल रहेला, जागत रहेला, जन्म करा के पंजीरी लेके घरे जाना।
0: बिल्कुल
1: जैसन जैसन जेकी सपड़े, जैसन जेकर आस्था रहे, आज जितना आप शक्ति उतना भक्ति।
0: भक्ति बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन एक चीज बड़ा ध्यान देवे के चीज बा गौरी भौजी, वो
1: हाँ
0: ये कि देखा बरखा के मौसम में चारों ओर पानी जमा हो जा रहा,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: जल जमाव से जनबा मच्छर और दूसरा कीड़ा मकोड़ा भी तेजी से बढ़ रहा।
1: बिल्कुल।
0: यही में देखा डेंगू मलेरिया ये जैसे बीमारी भी जनबा ओकर खतरा बढ़ जाला। और घर के आसपास जन गंदा पानी कभी भी जमा मत होके देखी, कहे से कि देखा नली नाली हो चाहे गली हो चाहे रास्ता, हर जगह देखा साफ सफाई जनबा नियमित रूप से हमन के करे के चाहिए। और कूड़ा कचरा के खुले में फेंके के बजाय जनबा ओकर जन निर्धारित जगह बा कूड़ादान यानी वहां पे जरूर डाली।
1: बिल्कुल आप सही कहा अजलू भैया कि अगर हम लोग ए मौसम में अगर लापरवाही कैल जाए, कहीं भी मान लें कि जन कूलर है या फिर कोनो डब्बा है, कुछ भी पानी में खुले में खूब जमा होता, तो मच्छर के पनपे के मौका मिल जाला।
0: बिल्कुल
1: और ये इतना पनप जाई है, अब कहाँ कहाँ चिपक जाई है, कहाँ कहाँ कटी है, कहाँ कहाँ रोग फैली है
0: बिल्कुल।
1: कि आप समझ ना पाई है। तो पानी की निकासी के उचित इंतजाम करे पर खास ध्यान हम लोग के
0: देवे के
1: देवे
0: चाहिए,
1: के चाहिए।
0: सही कहते
1: आज साफ सफाई अपना के बीमारी से अपने परिवार के सुरक्षित रखें।
0: हैं।
1: अब बरखा में देखे दूषित पानी पिए से कई तरह की बीमारी हो सकेला,
0: सही कहते
1: आप
0: हैं।
1: पिए खातिर हमेशा साफ सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करे के चाहिए। जरूरत पड़ला पर पानी के उबाल के या उचित तरीका से शुद्ध करके ही पिए। खाना बनावे या खाए से पहले हाथ साबुन से रगड़ रगड़ के जरूर धोए।
0: बिल्कुल धोए। और इमें देखा बचवा लोग थोड़ा सा लापरवाही बरतलन उनके आदत में ही लियावे के चाहिए। और खास तौर से देखा खुला में जो रखल खाना हो ओके खाए से बचे की कोशिश करे के चाहिए। अगर मक्खी बैठ गई ना तो वो खाना के रास्ते जन बा उनका जो बीमारी बा उनका संक्रमण जन बा वो पेटे में पहुंच जाएगा
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: खतरा बढ़ सकेला उसे। तो बचवा हो चाहे बुजुर्ग स्वच्छता के बारे में खास सावधानी रखे के चाहिए।
1: हाँ
0: और देखा स्वास्थ्य स्वच्छ पानी अगर रही, हाथ साफ रही, तो अपन जीवन भी जनबा स्वस्थ और मजबूत रही। और जल जमाव वाला जन जगह बा ऊपर मच्छर के प्रजनन बहुत तेजी से होखेला। इससे जनबा घरे के छते पे हो या कभी कभी टायर पे या कभी फूटल गगरी होला ओहू में जनबा वो जम जाला, तो
1: हाँ
0: इससे थोड़ा सा के बचे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जब भी बेकार बर्तन होला पानी देखा मैं जमा हो देर ना लगेला, तो हम लोग के कूलर और पानी रखे वाला बर्तन के नियमित रूप से साफ करे के
0: करे
1: चाहिए।
0: के चाहिए।
1: और शरीर के पूरा ढकले वाला कपड़ा ही पहरे, और जरूरत पड़ला पर मच्छरदानी भी लगावे, मच्छर अगरबत्ती भी जलावे। और गांव मोहल्ला के नाली में कूड़ा फेंक के पानी के रास्ता मत रोके, कचरा मत बहावे, कहीं गंदगी या जल जमाव दिखे तो बल्कि मिलजुल के ओकर सफाई करें। अब बीमारी के लक्षण अगर दिखाई दे तो लापरवाही ना करें, आज स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत सलाह लें,
0: बिल्कुल नजदीकी
1: डॉक्टर
0: स्वास्थ्य
1: भैया
0: केंद्र पे जाएं।
1: और
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर
0: सही
1: बहन
0: कहते
1: से संपर्क करें।
0: सही कहते हैं। और देखा सावधानी ही जोन होला ना वो असली हथियार होला। तो अगर सामूहिक सफाई से संचारी रोगन के जनबा ओकर रोकथाम जनबा आसानी से करल जा सकेला। स्वच्छता खाली घर तक सीमित नहीं हो बल्कि पूरे गाँव का जिम्मेदारी रहे के चाहिए। खासतौर से बरखा में सड़क नाली स्कूल और जितना भी सार्वजनिक स्थान हुआ गरीब हो जी
1: हाँ
0: ओकर साफ सफाई जरूर रखे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कूड़ा कचरा तो बिल्कुल सही जगह जैसे गीला कचरा
1: अलग
0: जनबा गीला
1: डाला,
0: में जाए
1: सूखा अलग
0: सूखा
1: डाला।
0: सूखा में डालें, तो ये थोड़ा सा प्रबंधन जरूर करे के चाहिए। जल जमाव के जल्दी से जल्दी हटावे का प्रयास करे के चाहिए।
1: बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि बहुत घर में देखें छिलका बच जाला साग सब्जी का, या कुछ कभी कभी खाना बच जाला, तो आप ओके जो हवे गाय के आगे रख दें, सूखा अखबार बिछा करके, पेपर बिछा के रख दें, गाय खा ले, गीला वाला कूड़ा एक अलग जगह पर निस्तारण करें उकर,
0: बिल्कुल
1: हाथ धोवे, साफ पानी पिए, ताजा खाने खाना खाए के आदत बनौले रहे, मच्छर के पनपला से रोकने के लिए बीमारी से बचे के सबसे बढ़िया उपाय में से एक वही बात,
0: हाथों सफाई रखें, सब साफ सफाई
1: जितना आप स्वच्छता बरती हैं, जितना आप अपने घर द्वार के चमका के या गांव मोहल्ला के रखिए उतना अच्छा रहे।
0: बिल्कुल,
1: तो देखें आमे सब लोग मिलके स्वच्छ गांव और स्वस्थ समाज बनावे के संकल्प लेहल जाए, स्वच्छता अपनाई, संचारी रोगों से बची और स्वस्थ जीवन बितावल जाए।
0: बिल्कुल एकदम कवियत्री की तरह से आप बतियावे लगी। देखा स्वच्छ सुरक्षा का ध्यान रख करके ही जनबा हम अपन आवे वाले पीढ़ी खाते जनबा सुरक्षित भविष्य छोड़ सकेला जा।
1: हाँ।
0: और हमहन के भी जनबा स्वच्छतापूर्ण जीवन शैली अपना करके जनबा एगो मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र बनावे के चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और देखा हमहन के बात बात कही तो होत रही, लेकिन आज के पंचायती में होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता भी हुआ, और देखा बरसात में होवे वाले रोग लक्षण व बचाव के जन बा कौन कौन उपाय अपनावल जा सकेला।
1: हाँ।
0: ए विषय पर अपने मुन्नई भैया से बात बात कही करत हुआ तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए जानकारी के सुन लीजिए।
2: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प,
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प,
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: पंच भैया लोग देखें इस समय बरसात का मौसम चलत है और बरसात के मौसम में तमाम तरह का बीमारी हम लोगन के आसपास आवनी और वो बीमारी से कैसे हम लोगन बच सकीला, चूंकि अगर बचाव का उपाय बा तो वो इलाज से अच्छा बा, वह प्राथमिक इलाज बा, तो सबसे पहले बचाव का तरीका जरूर हम लोगन के करे के चाहिए। आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता साहब आल हुआ जौन की होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हुआ, तो आज आपसे ही हम लोगन जानब कि जौन बरसात में, चूंकि बरसात का मौसम बा और मौसमी रोग कहीं न कहीं बहुत परेशान हम लोगन के करन, तो बरसात के मौसम में कौन कौन रोग से हम लोगन ग्रसित होइला, उकर लक्षण और उपाय का बा उसे बचे का। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार पंच भाइयों।
4: डॉक्टर साहब ये बतावें कि इस समय जौन बरसात का मौसम बा इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन रोग ऐसा बाया जौन हम लोगन उसे ग्रसित होइला।
5: देखिए पंच भाइयों, जब ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात का मौसम आता है तो एक सुखद एहसास लेके आता है
4: जी,
5: लेकिन अपने साथ वो कई बीमारियों को भी लाता है। और अगर बरसात में होने वाले रोगों को देखा जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार में उनको विभाजित किया जा सकता है। जल जनित रोग
4: जी,
5: वायु जनित रोग, मच्छर जनित रोग और कुछ चर्म रोग।

0: अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: बारिश में बहुत परेशान करते हैं।
0: तो ये जल जनित रोग कौन कौन रोग बा?
1: जल जनित रोग का पहले तात्पर्य समझ लें कि जो जल के माध्यम से होता है, यानी
0: जी
1: दूषित जल किसी भी प्रकार से आप ग्रहण करते हैं, उस वजह से जो रोग होते हैं उनको जल जनित रोग की श्रेणी में रखा गया है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: सबसे पहला तो आप देखते होंगे दस्त, डायरिया, दूसरा गैस्ट्रोएंटाइटिस जिसमें डायरिया के साथ उल्टी भी होती है,
0: जी जी जी
1: तीसरा आया टाइफाइड, फिर उसके बाद पेचिस जो बहुत कॉमन है गांव गांवों में।
0: जी जी
1: हाँ, इन सभी का कारण जो है दूषित जल का सेवन है।
0: अच्छा, जैसे अगर ये रोग से, जल जनित रोग से ग्रसित अपन पंचभुया लोग होता हैं, तो डॉक्टर साहब एकर उपाय का बा? कैसे अपन जौन पंच भाई लोग हम बच सकन ऐसे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जल जनित जो रोग हैं, शुद्ध जल पीने से ही इसको रोका जा सकता है, और इसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है। हर घर घर जल योजना के तहत हर घर को शुद्ध जल, पीने योग्य शुद्ध जल उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है,
0: जी
1: और
0: जी
1: हर प्रयास भी इस पे बहुत जारी है। अगर गाँव में देखा जाए, हमारा जो सोनभद्र है वन और पहाड़ों का क्षेत्र है,
0: जी
1: तो यहाँ पे दूषित जल फैलने का मुख्य कारण होता था कि जैसे लोग बाहर खुले में शौच करते थे, अब वो चीजें बहुत कम हो गई हैं। फिर भी बारिश के मौसम में गंदा जल जो है पेयजल स्रोतों से मिल जाता है, और जो है दूषित पेयजल को भी दूषित कर देता है। तो उस स्थिति में पीने के पानी को हमें शुद्ध रखना है। कई
0: जी
1: प्रक्रियाएं बहुत आसान है जो मैं आपको बताता हूं।
0: जी जी
1: जैसे एक फिटकरी ले लीजिए, उसको रस्सी में बांध के 7-8 बार पानी के मटके में घुमा दीजिए, और उसको 1 घंटे छोड़ने के बाद आप उसको सेवन करिए,
0: जी
1: वो पानी जो है अच्छा हो जाएगा। दूसरा तरीका है, क्लोरीन के टैबलेट आते हैं, 500 मिलीग्राम का टैबलेट आता है, 20 लीटर पानी के लिए 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट बहुत ही काफी है। 20 लीटर पानी में एक टैबलेट छोड़ दीजिए और 1 घंटे बाद वो पानी पीने लायक हो जाता है।
0: जी
1: और तीसरा जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि पीने वाले पानी को उबाल लें, कम से कम 3 से 4 मिनट उसे अच्छे से खौला लें,
0: जी
1: और फिर उसको ठंडा करके पिए, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया पैरासाइट होंगे सारे मर जाएंगे।
0: अच्छा, ये माने व्यवहारिक उपाय
1: जी
0: रहना। अच्छा, कुछ होम्योपैथ में चिकित्सकीय उपाय भी वहाँ जौन जल जनित रोग के रोकल जा सकला?
1: जी जल जनित तो देखिए, इस समय जो कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो रोपाई का समय रहता है, लोग धान में पानी में काफी देर तक खड़े रहते हैं, तो कई बार उस वजह से भी हमें कई रोग होते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: विशेष ध्यान ये देना है कि कुछ होम्योपैथिक दवाइयां, जैसे मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हैं और बहुत कारगर हैं। जैसे एक पहली दवाई मैं आपको बताता हूँ, मरकौर, ये डायरिया और पेचिस की बहुत अच्छी दवाई है।
0: जी जी
1: अगर इसका 3-3 बूंद दिन में 3 बार सेवन किया जाए तो रोग बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, और मरकॉर 200 का रोज अगर 3 बूंद लिया जाए तो पेचिस के शिकार आप नहीं होंगे,
0: जी
1: बच जाएंगे। दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम, या तो कोविड में बहुत देखा गया कि वायरल डिजीज में बहुत अच्छा काम किया,
0: जी जी
1: डायरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम को तो यूं कह लें कि अगर लैट्रिन में बहुत बदबू हो और एकदम पानी की तरफ फर्श पे फैल जाता हो लैट्रिन, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, उस केस में पोडोफाइलम अगर 200 का एक डोज दे दिया जाए तो तुरंत बंद हो जाता है
0: अच्छा,
1: डायरिया, बहुत अच्छा है।
0: मने ये चिकित्सकीय उपाय रहल
1: जी
0: है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे जौन वायु जनित रोग बा, खास तौर से बरसात के मौसम में होता, तो एकर का लक्षण बा आ कौन
1: वायु
0: कौन रोग बाए में?
1: वायु जनित रोगों को देखा जाए तो इसमें मुख्यतः सर्दी जुकाम है,
0: जी जी
1: जो ये छींकने से वायु में फैलता है एक लोगों से दूसरे लोगों के।
0: जी
1: तो इसमें मेनली सर्दी जुकाम है जो आजकल कॉमनली आप देखेंगे कि वायरल हो जाता है, लोगों को सर्दी जुकाम, बुखार, बदन दर्द, ये मेन लक्षण है इसके। अब इसमें जो है आपको बचाव ये करना है कि अगर सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो खुले हवादार कमरों में रहें, और बुखार अगर तेज है तो पानी की मात्रा कम ना होने पाए इसके लिए ORS का घोल भी लेते रहें।
0: जी जी
1: जैसे मैंने डायरिया में बताना मैं भूल गया, उसमें भी पानी की मात्रा कम होने की सबसे बड़ा डर रहता है। ORS का घोल इसमें रामबाण चीज है,
0: जी जी
1: आप औषधि तो ले ही, लेकिन पानी की मात्रा कम न होने पाए और मिनरल्स की मात्रा शरीर में कम न होने पाए, साल्ट की मात्रा कम न होने पाए, ORS का घोल उसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिला के उसको लेते रहें। इससे कभी भी साल्ट और पानी की मात्रा की कमी नहीं होगी
0: जी
1: और आप आसानी से रिकवर हो जाएंगे।
0: अच्छा, जौन वायु जनित रोग जैसे वायरल रोग बा, तो एमे व्यवहारिक उपाय हम लोगन का कई सकीला?
1: व्यवहारिक उपाय तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये अगर आपको हो गया है तब ये करिए कोशिश कि घर के परिवार में और किसी को ना हो, थोड़ा सेपरेशन कर लीजिए, मास्क पहनिए, हाथ को अच्छे से धोइए तभी हाथ नाक पे लगाइए,
0: जी
1: और भीड़ भाड़ में ज्यादा जाने से बचिए, अगर जाइए तो मास्क का प्रयोग करिए, और

0: सर्दी और गर्मी दोनों से बचाव रखिए। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है कि दिन में बहुत गर्मी होती है, कभी कभी धूप निकल जाती है, और फिर शाम होते होते बहुत ठंडी हो जाती है। तो ऐसे वातावरण में अपने शरीर को के तापमान को मेंटेन करने की कोशिश करिए। सडनली धूप में से आके एसी में मत जाइए,
1: जी
0: टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तुरंत वायरल हो जाएगा आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि लो होगी तुरंत, और तुरंत वायरस का अटैक हो जाएगा। वायरस तो हर जगह घूम रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल सही बात कहते। अच्छा, चिकित्सकीय उपाय में का कहल जा सकला?
0: जी, चिकित्सकीय उपाय में एक हमारे में होम्योपैथिक औषधि आती है, इन्फ्लुएंजियनम 200। अगर इसका एक डोज आदमी 3 दिन तक ले लगातार, रोज सुबह खाली पेट, तो उसको जो ये सर्दी जुकाम है ये नहीं होगा।
1: अच्छा
0: और इसी दवा को हो जाने पे ले तो आसानी से ठीक भी हो।
1: अच्छा
0: उसके साथ साथ जो है, अगर शीत गर्म की वजह से हुआ है तो ब्रायोनिया, आर्सेनिक एल्बम, अगर बदन में दर्द है तो रस्टाक्स भी ऐड किया जा सकता है।
1: बिल्कुल। माने वायरल बुखार में देखल जाला डॉक्टर साहब की बहुत तेज बुखार चढ़ जाला,
0: जी,
1: तो एकरे बदे का कहल जाए?
0: इसके लिए हम लोगों में एक औषधि आती है चिरैता
1: जी जी
0: और बैप्टीशिया मदर टिंचर, लक्षण अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत आसानी से बुखार कंट्रोल हो जाता है, और बुखार जब तेज हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस मौसम के बुखार में अक्सर प्यास कम लगती है और पानी की कमी हो जाती है तुरंत।
1: जी जी जी
0: ओआरएस का घोल जरूर पीते रहें।
1: बिल्कुल। अच्छा, बरसात के मौसम में मच्छर कटले से भी बहुत रोग फैला ना,
0: जी
1: तो मच्छर कटले से कौन कौन ऐसन बीमारी बा जौन हम लोगन के ग्रसित कर सकल है?
0: मच्छर जनित रोग तो देखिए मुख्यतः, अब हमारा सोनभद्र पहाड़ों और वनों वाला क्षेत्र है, यहाँ
1: जी
0: मच्छरों की
1: जी
0: बहुतायत मात्रा है। तो मच्छर जनित जो मुख्य दो रोग हैं वो मलेरिया और डेंगू हैं,
1: जी जी
0: जिसे सभी भलीभांति अब परिचित हो चुके हैं। इतने कार्यक्रम हमारे देश द्वारा चलाए जा चुके हैं कि हर गांव में हर बच्चा इस रोग से परिचित है और जानता है।
1: बिल्कुल सही बात आप कहते हो। अच्छा, एकर व्यवहारिक उपाय मच्छर मलेरिया या डेंगू से बचे बदे का कहल जा सकला?
0: देखिए, मच्छर से बचना है आपको, तो मच्छर से बचाव के लिए आपको जो सामान्यतः उपाय हैं कि कहीं भी पानी जमा होने ना दें।
1: जी
0: अगर पानी, देखिए डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, और जो मलेरिया का है वो रुके हुए पानी में, जमा हुए पानी में, तो आपको अक्सर गमलों में, कूलर में जो पानी जमा है उसको बदलते रहिए।
1: जी
0: किसी भी जगह टायर, फटे हुए टायर, कटे हुए ट्यूब, डब्बे, तालाब इत्यादि में अगर पानी वहां जमा है, तो तालाब इत्यादि तो बदल नहीं सकते पानी,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: वहां छिड़काव किया जा सकता है हाइपोक्लोराइट पाउडर का। हाँ, कुओं में जहां भी पानी या कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको साफ सफाई रखें, मच्छर नहीं उत्पन्न होंगे या कम होंगे तो आप बच जाएंगे। दूसरा उपाय है, अगर मच्छर से बचना है, मच्छर हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं,
1: जी
0: कुछ ऐसे क्रीम आते हैं ऐसा जो आप अपने बॉडी पे लगा सकते हैं जिससे मच्छर आपको नहीं काटेंगे। ये सब कुछ चीजें, कभी कभी धुआं आप कर सकते हैं, जैसे जहां कोई चीज उपलब्ध नहीं है कुछ अंगीठी जला के धुआं कर दीजिए तो मच्छर अपने आप धुएं से डर के भाग जाएंगे। पंच भाइयों, मैं यही हमेशा से कहता आया हूं और आज भी यही कहता हूं कि आपको रोगों से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रहना है। एक
1: जी
0: परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, एक को बीमारी होती है, 3 को नहीं होती है,
1: जी
0: कारण क्या है? तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के 4 ही स्तंभ हैं। आपको सबसे पहला स्तंभ है अपने आप को प्रसन्न रखना है, दूसरा संतुलित आहार, तीसरा नियमित व्यायाम और नियमित दिनचर्या। ये
1: बिल्कुल
0: 4 चीजों का अगर आप पालन करेंगे तो रोग आपको कभी छू ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने कार्यक्रम में है ना, और इतना बढ़िया जानकारी आप अपने पंच भैया लोगन के दे लें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद पंच भाइयों।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: देखा अश्रू भैया, अब इन हमारे लोगों बरसात में होखे वाले रोग लक्षण बचाव के उपाय से जुड़ल जरूरी जानकारी सुनत रहनी है जा। एकरे बाद अब अगर हम लोग खेती किसानी के बात पर भी ध्यान दिहल जाए तभी हमन के जनपद में कई जगह बढ़िया बरखा हो रहल बा, लेकिन देखे खबर मिलत बा कि कुछ इलाका में बारिश इतना ज्यादा हो गई बा कि वो बाढ़ से कम नहीं खे।
4: बिल्कुल सही कहत है गौरी भौजी। और देखा बरखा के प्रतिकूल मौसम में जनबा किसानन के सामने खेती के कई गो चुनौती रहेला।
3: हाँ।
4: जैसे जल जमाव के चलते उपज के बाजार तक पहुंचावल भी बहुत कठिन हो जाला।
3: हाँ।
4: इसने समय में देखा किसानन के अपन जन उपज बा ओकर सही बाजार भाव मिलल बहुत जरूरी बा। और इसने में FPO जन होला वो अपन किसान खाते जन बा एकजुट करके उनके सामूहिक रूप से उपज के बाजार में पहुंचावेला। कई गो किसानन के जन उपज बा एक जगह जुटला से जन बा ओकर मात्रा बढ़ जाला।
3: बिल्कुल सही कहना है आप। अधिक मात्रा में उपज होखे से खरीदारन से बेहतर बातचीत करे के मौका मिलेला।
4: बिल्कुल सही कहा।
3: ऐसे किसान अकेले बेचला के बजाय सामूहिक रूप से बाजार से जुड़ सकेला। FPO किसानन के स्थानीय बाजार से लेकर के दूर दराज के खरीदार तक पहुँचाव में मदद कर सकेला। FPO के माध्यम से किसानन के उपज के छटाई अग्रेडिंग के सुविधा मिल सकेला।
4: बिल्कुल सही कहते हैं। और जरूरत के हिसाब से देखा भंडारण हो।
3: हाँ।
4: पैकेजिंग हो।
3: हाँ।
4: या मूल्य वर्धन हो।
3: हाँ।
4: पर भी ध्यान वो लोग दिए हैं।
3: हाँ।
4: और देखा एक साथ उपज के बिक्री से परिवहन जो कहा जाए ना कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचावे
3: हाँ, खर्च
4: ज्यादा हो जाला।
3: हाँ,
4: तो परिवहन हो या विपणन उससे लागत कम करने में मदद मिलेगा। और FPO अलग अलग खरीदार व्यापारी या प्रसंस्करण इकाई से बाजार संबंध बना सकेला। और डिजिटल बाजार या ई नाम जैसन मंचन पे भी जनबा ई बाजार का दायरा इसे बढ़ सकेला।
3: बिल्कुल सही कह रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार कई FPO अब ई नाम समेत अलग अलग बाजार मंच से जुड़ल बाटे। ऐसे किसानन के अपना उपज खातिर ज्यादा खरीदार तक पहुंच बनावे के अवसर मिलत बा। सही बाजार जानकारी या सामूहिक मोल भाव किसानन के बेहतर दाम पावे में मदद कर सकेला। अब बरखा में अगर स्थानीय बाजार प्रभावित होके तो FPO वैकल्पिक बाजार खोजे में मदद भी कर सकेला।
4: बिल्कुल सही कहते हैं। और देखा किसानन के उपज के मांग जोन बा गुणवत्ता और बाजार भाव के जानकारी जुटावल बहुत जरूरी बा। इसने में FPO के माध्यम से उपज के सामूहिक बिक्री का योजना बनावल जा सकेला। और देखा एकजुट किसान खरीदारन के सामने जोन बा अपन उपज के बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकेला किसान भी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और प्रसंस्करण या मूल्य वर्धन से कच्चा उपज से के बेहतर बाजार मूल्य
3: मिल सकेला। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे किसानन के बिचौलियों पर जो निर्भरता कम करे आ बाजार पहुंच मजबूत करे के अवसर मिलेला। देखे आए किसान भाई बहन मिल के ये मजबूत FPO से जुड़ी और सामूहिक ताकत बढ़ावल जाए। FPO से जुड़ी और बाजार के दायरा बढ़ाएं या अपन मेहनत के बेहतर मूल्य पाएं।
4: बिल्कुल सही बात है। और देखा हमान का बात बत कही तो होत रही, लेकिन जैसे अभी हमान FPO के बारे में बात बत कही करत रह लीजा।
3: हाँ।
4: तो ऐसे ही आज हमान के पंचायती में FPO संचालक नीरज कुमार सिंह भी अभी जुटल बढ़न।
3: हाँ हाँ।
4: और FPO द्वारा किसानों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन कैसे करल जा सकेला ये विषय पर मुने भैया से बात बत कही शुरू हो रहा बा।
3: हाँ।
4: तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए जानकारी सुनल
3: जाए।
5: में कौन कौन ऐसा संस्था बाई जौन कहीं न कहीं हम लोगन का सहयोग करनी, हम लोगन के खाद बीज उपलब्ध करावनी, तरह तरह का प्रशिक्षण से खेती किसानी का जानकारी उपलब्ध करावनी। आज हम लोगन के बीच में नीरज कुमार सिंह भैया आल हुआ। आप नया रास्ता किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का निदेशक हुआ और आप के द्वारा अपने किसान भाई लोगन के तरह तरह का प्रशिक्षण प्राप्त होला। नीरज सिंह भैया, आज आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले हम ये जानल चाहब आपसे कि जैविक उत्पादन बदे, जैविक खाद बनावे बदे भी अपने किसान भाई लोगन के आपका जवन किसान उत्पादक कंपनी बा वो प्रशिक्षण वगैरह देला है।
6: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जो अपना किसान उत्पादक कंपनी है, इसमें हम लोग करीब 450-500 किसानों का अपना एक समूह है
5: जी।
6: तो हम लोग बीच बीच में जैविक पाद कैसे किसान बनाएं और कैसे उपयोग करें, इसके लिए छोटा छोटा प्रशिक्षण रखते हैं
5: जी जी।
6: और उस प्रशिक्षण में हम कोशिश करते हैं कि बहुत बेसिक चीजों से शुरुआत करें, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जैविक, जैसे हम लोग बोलते हैं जैविक,

0: तो हम लोग जैविक शब्द जो है उनको बड़ा अजीब लगता है किसानों
1: जी जी जी,
0: तो हम लोग उनको समझाते हैं कि जैविक मतलब देसी
1: जी,
0: जो आपके पूर्वज करते आ रहे थे उसी को हमें अब फिर से करना है
1: जी।
0: तो जैसे हम जब बैठक करते हैं छोटी छोटी, और किसानों का ड्रम छोटे छोटे रूप में बांट देते हैं, जैसे गांव में हम एक दो किसानों का ही बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि पहले आप खुद करिए कंपोस्ट खाद बनाने की विधि, और उनको जीवामृत बनाने की भी सिखाते हैं, फिर बीजामृत बनाने सिखाते हैं, कैसे बनाएं और उसे कैसे लाभ प्राप्त करें। तो इस तरह छोटे छोटे प्रशिक्षण हमेशा हम कराते रहते हैं अपने किसानों का।
1: अच्छा, अब तक आप लोगन कितना किसान भाई लोगन के प्रशिक्षण दे चुकल हुई हैं?
0: जैसे 450-500 ग्रुप हमारा है किसानों का
1: जी जी,
0: तो मान चलिए कि हम कोशिश करते हैं कि एक गांव में 2-4 किसान रहे हैं, तो इस तरह जोड़े तो हम लोग करीब 40-50 किसानों को इस तरह बेसिक चीजें सिखा चुके हैं आज के डेट।
1: अच्छा, जैसे जैविक प्रशिक्षण देवे आप लोगन शुरू करें ना, तो उनकी प्राथमिक जानकारी का देना है आप लोगन?
0: हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जैसे हम जब बुलाते हैं उनको या हम खुद जाते हैं गांव में पहले
1: जी,
0: ऐसा नहीं कि हम प्रशिक्षण कोई बड़ी संस्था में बैठ के करा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना ग्रुप है, हम किसानों के साथ बैठते हैं तो तय कर लेते हैं कि आज इस गांव में जो है हम जाएंगे और वहां हम किसानों को बैठ के खुद बताएंगे और दिखाएंगे भी
1: जी।
0: तो इस तरह हम जब किसान आता है तो बताते हैं कि जैसे आपके पूर्वज खेती करते थे तो क्या करते थे, तो उनके लिए कोई विशेष मशीन तो था नहीं उस जमाने में
1: नहीं,
0: तो आज जो जंगल है
1: जी,
0: या जंगल में जो पेड़ पौधे हैं या जो फल फूल मिल रहा है, क्या उनको यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं या खाद देते हैं? नहीं देते
1: जी।
0: तो अपना वो नेचुरल उनका जीवन है वो
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे फसलों का भी जीवन है, सब्जी का भी जीवन है, हमने उनको खराब कर दिया
1: जी
0: रसायन दे के, इसलिए उनका स्वरूप बदल लिया। आज उसमें हमें विष लगा मिल रहे हैं, यूरिया मिल रहा है सब्जी में
1: जी,
0: आर्सेनिक मिल रहा है जमीन से, तो ये हम उनको बताते हैं तो डरते हैं थोड़ा सा, ऐसे हम बताते हैं कि आप जो खा रहे हैं आज में डेट में वो रसायन युक्त है
1: जी,
0: और आप अपने घर में एक बैगन का पेड़ बोइए, पहले हम छोटी चीज शुरुआत करते हैं, एक बैगन का पेड़ बोइए, टमाटर बोइए, धनिया बोइए, पालक बोइए, उसमें कोई रसायन मत डालिए पहले
1: जी।
0: आप जैसे कुछ जरूरत पड़े तो खुद बना लीजिए रसायन, कीड़े लग रहे हैं तो आप नीम का ले लीजिए, गौमूत्र ले लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट तो होगा जरूर आपको, लेकिन आप जो फसल पैदा करेंगे उससे लाभ बहुत आपको आनंद मिलेगा, निरोग रहेंगे आप जीवन में। तो इस तरह धीरे करके किसान अब धीरे वो अब कोशिश कर रहे हैं लोग, पहले तो बहुत डरते थे, जैसे किसी भी किसान से पूछते थे शुरू में तो ये किसान नहीं मिलता था जो दवा ना डालता हो, मतलब अगर 4 बैगन बोवा है अपने घर में उसमें भी दवा डालता था वो,
1: बिल्कुल
0: कीड़ा लगे तो भैया बाजार से दवाई लाए और डाल दिए, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि अब ये बंद हो।
1: अच्छा, अगर जैसे अपने किसान भाई लोगन के आप बतावत हों सिखावत हों तो कंपोस्ट विधि कैसे, माने कंपोस्ट खाद अगर बनावल चाहत हों अपन पंचभिया लोग तो वो कैसे बनावाएं?
0: तो जैसे गोबर है तो किसान क्या करते हैं गोबर ऐसे ही डाल देते हैं
1: जी
0: सड़क, ऐसे नहीं डालना चाहिए, उसके लिए किसी विभाग से भी और हमारी संस्था से भी उनको कीड़े मिलते हैं
1: जी जी,
0: जो इटालियन कीड़े भी कहते हैं लोग उसको, उसको डाल दें उस दिन छोड़ दें या गड्ढे बना के उसमें डाल दें छोड़ दें, तो एकदम बारूद बना देना, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है गोबर को, ना भुरभुरा हो जाएगा, फिर चाल लें इस तरह बता के उसको आराम से आप डाल सकते हैं। ये चीज सरकार भी दे रही है, फ्री में दे रही है, लेकिन किसान अब थोड़ा सा हर चीज आसान चाहता है कि बाजार में मिल रहा है तो लेके डाल दें, अब तो कंपोस्ट खाद बाजार में भी मिल रही है, किसान चाहे तो ले सकते हैं, इफको भी दे रही है, अच्छे अच्छे खाद आ गए हैं, लेके आप डाल सकते हैं ऑर्गेनिक।
1: अच्छा, जैसे आप जीवामृत या अन्य जौन उपाय बाया अपने किसान भाई लोगन के एकरे बारे में भी प्रशिक्षण आप लोगन देना, तो कहीं बाहर से आप लोगन विशेषज्ञ बुलवाओ ना कि नहीं स्वयं आप देना?
0: जैसे कुछ चीजें तो हम दे देते हैं और कुछ चीजों के लिए हम जैसे बीएचयू है, बीएचयू में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है, केबीटी अपने यहाँ खुल गया है उसमें वैज्ञानिक है, तो उनके द्वारा भी हम बुला के उनसे करवाते हैं, अभी ज्यादा नहीं हो पाता है, और हम कोशिश करते हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा हम उनको बुकलेट उड़ा देते हैं कि कैसे करना है खुद, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है जैविक, उद्देश्य ही विधि है, वो जानते रहते हैं सब, वो करना नहीं चाह रहे हैं, आज की डेट में सोचते हैं सुविधा बाजार में मिला ले आए दवाई तुरंत डाल दें। तो बहुत जैसे अभी भारतीय किसान संघ है उसके संस्थापक थे अपने जो है दत्तोपंत ठेड़ी जी, तो उन्होंने बहुत पहले कहा था, यानी हरित क्रांति से शुरू में कहा कि पहले किसान के ऊपर बाजार डिपेंड था।

0: आज के डेट में बाजार के ऊपर किसान डिपेंड हो गया है। कि छोटी सी दवा भी लेनी है अगर बैगन का पेड़ में, तो जाता है तुरंत दवा ले आता है जो स्वयं बना सकता है। और हम लोग एक अभियान और चला रहे हैं
1: जी,
0: शहरों में भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान ही किट हम चला रहे हैं। हम जैसे गांव में गमला शहरों में बो रहे हैं, छोटे छोटे गार्डन बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी उसमें किसी भी तरह का रसायन न डालें।
1: अच्छा,
0: और इसका बड़ा अच्छा उपयोग भी दिख रहा है, रावणजन शहर में भी दिख रहा है कि घर में जो है लोग बो रहे हैं, कोई रसायन नहीं डाल रहे हैं और उसका उत्पाद स्वयं खा रहे हैं।
1: अच्छा, अभी तक आप लोगन का जौन ये ऑर्गेनिक प्रशिक्षण बा, जैविक खाद का प्रशिक्षण बा, इसे कितना किसान भाई लोग लाभ उठाए का एकर उपयोग करत हम?
0: जैसे चावल में ले लीजिए, राइस में, तो जो जैविक चावल पैदा होता है
1: जी,
0: कुछ किसान है तेलंगाना में है, कुछ और जगह भी लोग अच्छे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, तो कुछ भाग उठ जैविक ही करते हैं
1: जी,
0: तो उसका लाभ ये है कि बड़े महंगे उत्पाद हैं, उसको खरीदने के लिए हर आदमी तैयार है आज के डेट में, तो अच्छा आमदनी मिल जा रही है उनकी
1: जी।
0: और मिलर्स जैसा है, हम मिलर्स पर काम कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग किसानों को सोच रहे हैं, उसमें किसी तरह रसायन जरूरत नहीं है, सावा है, कोदो है, रागी है, तो हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी है, हमारे किसान जो मेंबर है वो भी पहाड़ क्षेत्र के ज्यादा हैं, तो उसमें रसायन तो डालना ही नहीं है
1: जी,
0: तो अच्छा उत्पाद हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका उत्पादन बढ़े, जैसे रसायन की आवश्यकता ही न रहे उनको।
1: अच्छा, जौन जैविक खाद बा तो आप लोगन बाहर से भी अपने किसान भाई लोगन के उपलब्ध कराओ ना कि नहीं, उस स्वयं बनाए के ही अपने खेत में उपयोग कराना?
0: जैसे जो किसान बना सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है गाय। गाय जो हमारी गौ माता है, किसान को अगर गाय पाला है
1: जी,
0: तो उसको जरूरत नहीं है बाहर की। अगर गाय नहीं पाला है तब तो उसको बाहर से खाद लेना पड़ेगा
1: जी।
0: जो आज की डेट में इफको बना रही है और भी कई अच्छे एक्टिव भी बना रहे हैं इसमें हमारे कंपोस्ट खाद, जो उत्पादन अच्छा है। और गाय पाल रहे हैं तो गौमूत्र गोबर मूल चीज है इसमें।
1: अच्छा,
0: देसी जो अपना खेती है जैविक खेती है, उसके लिए मूल चीज यही है। गाय नहीं पाल रहे हैं आप तो गाय से ही देसी का सोच बन सकती है, तो गाय पालेंगे तो दो आमदनी है, दूध भी लेंगे और जैविक पदार्थ भी पैदा करेंगे।
1: अच्छा, गाय में भी जो अपन किसान भैया लोग पालत हो तो कुछ ओहू में तरह तरह का नस्ल बाई, तो वो गाय में कौन ऐसा नस्ल बाई जोने से अच्छी खाद हम लोगों को मिल सकल है?
0: देसी गाय होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ देसी गाय पहले हमारे पूर्वज पालते थे। जैसे अब क्या है कि लोग बड़ी बड़ी गाय लगे पालने, सहवाल बड़ी गाय, जैसे जो बड़ी नस्ल की गायें हैं, विदेशी नस्ल की गायें हैं, उसको जो हमारे यहाँ पहले देसी गाय देखे उन्हें छोटी छोटी गायें होती थी, उसी को पाले हूँ यहाँ की गायें, जो उसी से ही अब तो गौमूत्र भी उनका अच्छा है, गोबर भी अच्छा है और दूध जो मिलता है वो बिल्कुल स्वस्थ शरीर के लिए बेस्ट रहता है।
1: यानी कि
0: देसी नस्ल की गाय,
1: देसी नस्ल की गाय से गोबर और गोमूत्र से हम लोगन तरह तरह का जैविक उत्पाद बना सकीला, और जौन जंगल में अपन पेड़ पालो बाया
0: जी जी,
1: उनकर उपयोग कई कभी कुछ जैविक उत्पाद हम लोगन बना सकीला
0: आराम से। जैसे ये अपना पशुपालन से बहुत लाभ है, पशु अगर मर भी जाता है उसको जो हम जमीन पर ऐसे डाल देते हैं
1: जी,
0: उस साल में वो खाद बन जाएगा, जो इतना उत्पादित खाद रहेगा कि हमें अच्छे अच्छे जो खाद बाजार में आज रासायनिक डाल रहे हैं वो भी फेल है उनके सामने।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारा यही अनुरोध है कि सभी किसान भाई पशुधन का अमृत प्राप्त करें, जैविक उत्पाद पैदा करें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जी।
1: आज नीरज सिंह भी आज अपने कार्यक्रम में आई ना, और अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलेन, ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठे, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
3: भैया। हाँ,
2: और देखें कुछ और भी चर्चा करत ही ना।
3: हाँ हाँ बिल्कुल भैया, देखें मौसम का जानकारी भी हम लोग
2: हाँ, ये तो बहुत जरूरी बा,
3: रखे के चाहे तभी हाँ। ओकरे हिसाब से अपने अपन स्वास्थ्य और अपने खेती बाड़ी का
2: हम लोग स्वास्थ्य रखल जरूरी
3: बा, नजर रखल जरूरी बा, एलिए जानल भी जरूरी बा। तो देखें आज के जो न्यूनतम तापमान बा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम बा 32 डिग्री सेल्सियस, और आद्रता बा वो 60% बाटे।
2: बिल्कुल, और आद्रता इसमें तो बहुत ज्यादा ध्यान देवे की चीज बा।
3: हाँ,
2: भैया देखा इसमें बरखा बुनी कैसन रही का रही, तो ये सब चीज बहुत जरूरी चीज बा।
3: हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि नजर रखा जाए हम लोग सूचना पे। और अब तो बाजार भाव आपके हाथे लगल बा, कहाँ का बा
2: बाजार भाव की बात? ये बदे जरूरी बा कि देखा जब हम खेती किसानी करे ली जा
3: हाँ।
2: तो सबका ध्यान ये रहेला कि कैसे लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, और उत्पादन ऐसा हो कि गुणवत्ता युक्त हो, और गुणवत्ता युक्त इतना बढ़िया हो कि ऊपर

0: 2200 रुपया, लहसुन का भाव थोड़ा अच्छा मिलल बा 10,000 रुपया प्रति क्विंटल, धनिया भी अच्छा मिलल बा 8,000 रुपया प्रति क्विंटल,
1: हाँ
0: पालक 2,000 रुपया, अदरक बढ़िया बा 10,000 रुपया प्रति क्विंटल, सूरन 4,000 रुपया, देसी खेक्सा जन होला वो 3,000 रुपया, और हाइब्रिड वाला जो खेक्सा हो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
1: हाँ
0: खीरा 3,500 रुपया, मकई 1,200 रुपया, पपीता 3,000 रुपया, गाजर 2,800 रुपया, शिमला मिर्च 5,000 रुपया, चुकंदर 2,800 रुपया, करौंदा जो रहर वो
1: हाँ
0: 4,000 रुपया, ओकर चटनी आप बड़ा अच्छा बनावली।
1: बहुत बढ़िया अचारो
0: और
1: अच्छा बनायला करौदा
0: बिल्कुल
1: के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखा फूल गोभी जो रहल वो 2,500 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 2,500 रुपया सैकड़ा, और नींबू जो रहल 500 रुपया प्रति सैकड़ा रहा।
1: सैकड़ा
0: तो इसने में देखा उनके धन्यवाद दिहल जाए नवासी भैया के भी, और जो दोनों जाने विशेषज्ञ भैया मन उनके भी, तो कैसे
1: तो
0: कराओ थे नान मन
1: आज
0: फिर।
1: के जो कलाकार बड़ा नंदकिशोर शर्मा उनका साथी और उनका गावा लेके कजरी है और कृष्ण भगवान
0: और
1: का जन्म भी हुआ आज।
0: हाँ तो मतलब का कहा जाए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका भी बा
1: हाँ
0: दस्तूर भी बा, तो
1: तो
0: हो जाए।
1: सुनल जाए।

0: गौरी भौजी देखा इतना अच्छा मन फिर चल रहल बा। नंदकिशोर शर्मा भी संघाती लोगन के माध्यम से जैसन कि आज कृष्ण जन्माष्टमी बा तो ये असर पर इतना अच्छा गीत गौनाई के माध्यम से देखा एकदम अपन पंचायती भी एकदम भक्तिमय हो गई बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और देखा आज तक कृष्ण जन्माष्टमी और कल बा जन बा शिक्षक दिवस,
1: हाँ
0: तो शिक्षक दिवस के अवसर पर भी कल अपने पंचायती में जुट करके राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका ये अवसर पर ओम प्रकाश त्रिपाठी भैया का विचार सुनल जाए
1: हाँ
0: जो उनकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एगो अवकाश प्राप्त प्रधान अध्यापक हुआ।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और आज के दौर में जो युवा लोगन से जो कहल जरूरी बा वो ई कि भैया दृढ़ इच्छा शक्ति अगर अपना लिया जाए तो कौनो भी नशा रहे बुरा नशा
1: बिल्कुल
0: वो छोड़ल जा सकेगा।
1: बुरा मतलब नशा हो, लत हो, संगत हो, तो अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति बा, संकल्पित बाणे आप, तो आप उसे मुक्ति आपके संभव
0: पा
1: बा।
0: सकेलन। तो देखा यह सब अपन मनसा ले करके अपने पंचेती के समेटल समेटल जाए हिटे
1: हाँ
0: तो चलल जाए
1: हाँ
0: तो
1: सब
0: सब
1: पंचन
0: पंचन
1: के
0: के
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

श्रोताओ, अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हुए हैं। अब आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बैकअप सेट से, कविता सेठ, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की आवाजों में ये प्यारा सा गीत। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म आयशा से अमित त्रिवेदी निखिल डिसूजा न्यूमैन पिंटो को। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से मोहित चौहान और एलिसा मेडोसा को। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं नंद किशोर शर्मा व साथियों की आवाज में खिमटा।

इसी आखिरी लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:17 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा डबल इंजन सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मथुरा वृंदावन के विकास पर कर रही है काम। और प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र मुस्तैद, 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि EOS-05 भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: प्रदेश भर में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ में चौक स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्री द्वारकाधीश के दर्शन और पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उधर मथुरा सहित ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों में कृष्ण भक्तों का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का 5,53वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं और श्री कृष्ण भक्ति में लीन है। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा श्री की जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन की स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रदेव मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। इस बीच आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया और कृष्ण भक्तों का स्वागत कर रहे उन्हें शुभकामनाएं दी। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: वाराणसी कृष्ण भक्ति और उल्लास के रंगों में रंग गई है। काशी विश्वनाथ धाम सहित शहर के कई मंदिरों में जन्माष्टमी के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काशी शुक्रवार को भक्ति और उल्लास के रंग में रंगी नजर आ रही है। मंदिरों में विशेष सजावट, पूजन अर्चन और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो चुका है। मध्य रात्रि 12 बजे बाल गोपाल के प्रकट के साथ शंख घड़ियाल और घंटियों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद बाल गोपाल का श्रृंगार कर आरती और प्रसाद वितरण होगा। काशी के घाटों और

0: प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी के लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर, इस्कान मंदिर, माखनलाल मंदिर आदि केशव मंदिर समेत कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार तिथि और नक्षत्र के विशेष संयोग के कारण गृहस्थ और वैष्णव परंपरा के अनुयायी एक ही दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में उल्लास और आस्था का माहौल है। जगह जगह श्री कृष्ण मंदिरों को भव्यता के साथ सजाया गया है। झांकियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन और पूजन किया। बाद में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान श्रीकृष्ण का जन्म इस पावन धरती पर हुआ था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। श्री योगी ने धार्मिक महत्व की जगहों को पुनर्स्थापित और विकसित करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के क्रम में मथुरा वृंदावन के विकास पर निरंतर काम कर रही है।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस ब्रज भूमि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसी भव्य स्वरूप यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के देने का कार्य कर रही है। और हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिसर तैयार हो जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। ये पर्व और त्योहार केवल एक आस्था ही नहीं, ये हमारी आर्थिकी के आधार भी।
1: मुख्यमंत्री श्री योगी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट परिवार की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक धरोहर के उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए सभी से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को समझने के बाद जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी और उसके क्रियान्वयन का असर जल्द दिखाई देने लगेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नव निर्वाचित सीईओ पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रस्ट के महासचिव महंत गोविंद देवगिरी ने बताया कि सीईओ के साथ बैठक के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख तय होगी। वहीं रामलला की आरती व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शनिवार से श्रृंगार आरती के दौरान रामलला के समक्ष पदगान की नई परंपरा शुरू होगी। महंत गोविंद देवगिरी के मुताबिक सीईओ मंदिर की सुरक्षा समेत ट्रस्ट की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस पर कल गोरखपुर में प्रदेश के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में आज स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 7 परिवारों को सहायता राशि के चेक सौंपे। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से अधिक लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब तक

0: 5.5 लाख से अधिक क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। राहत और बचाव अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 1634 बाढ़ चौकियां, 1697 नाव मोटर बोट और 1000 से अधिक मेडिकल टीमें सक्रिय हैं और अभी तक कोई जन या पशु हानि की खबर नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में जन्माष्टमी की विशेष धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, डबल इंजन सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मथुरा वृंदावन के विकास पर कर रही है काम। और प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र मुस्तैद, 17,544 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: एक सौ 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 और 55 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस।

श्रोताओ, कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सुना फिल्म जब भी मेट से मोहित चौहान को। गीत इरशाद कामिल के थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म लव आजकल से राहत फतेह अली खान और प्रीतम को। इरशाद कामिल का लिखा ये गीत है और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
4: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
3: RBI कहता है जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा केंद्र से मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से साधना सरगम और उदित नारायण को। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत है और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

जब हैरी मेट सेजल, इस फिल्म से अभी आपने सुना अरिजीत सिंह को। इरशाद कामिल का गीत था और संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत है और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह को। गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ है और संगीत दिया है AR रहमान ने।

इसी आखिरी गीत के साथ ही मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं गुलजार के लिखे कलाम से। आवाज जगजीत सिंह की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना यास्मीन जयपुरी के लिखे कलाम को मिताली सिंह की आवाज में। इसी के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 और 13 सेकंड हुए हैं। अब आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म परदेश से कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

वीर जारा, इस फिल्म से अभी आपने सुना उदित नारायण को। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म बाजीगर से कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीत नवाब आरजू का है और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

तो श्रोताओं, इसी आखिरी गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:30 और 3 सेकेंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं हसरत मोहानी के कलाम से। आवाज गुलाम अली साहब की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अंजुम जयपुरी के लिखे कलाम को अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में।

0: इसी आखिरी गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 FM पर। रात्रि के 8:44 और 48 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से

0: अमेरिका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
5: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के

0: बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
1: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और छप्पन भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. Eastern Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant.

0: आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से अभी आपने सुना किशोर कुमार को। गीत मजरूह सुल्तान पुरी के थे और संगीत दिया था एसडी वर्मन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म काला बाजार से मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में ये प्यारा सा गीत। शैलेंद्र का लिखा ये गीत है और संगीत दिया है एसडी वर्मन ने।

0: का शोर
1: घूम घूम घूम नाचे मन का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना फिल्म बरसात की रात से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रोशन ने। इसी आखिरी गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होते हैं। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से करेंट अफेयर सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: करंट अफेयर्स। दिस इज आकाशवाणी। इन द वीकली प्रोग्राम करंट अफेयर्स नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एमिड्स ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स। द पार्टिसिपेंट्स आर शरद कोहली एंड दिलीप चिनॉय, इकोनॉमिक एनालिस्ट्स। द मॉडरेटर इज सरबजीत कौर।
2: वेलकम टू करंट अफेयर्स। India's economy has once again delivered a number that is grabbing global attention, 7.8 GDP growth. Prime Minister Narendra Modi has described the latest growth figures as a reflection of India's economic strength and resilience, particularly at a time when the global economy is facing significant headwinds from geopolitical tensions and trade uncertainties to high energy prices and slowing growth in several major economies. To understand what actually the 7.8 figure means, we have Mr. Sharad Kohli and Mr. Dilip Chinoy, economic analysts. Mr. Sharad and Mr. Dilip, welcome to the discussion.
3: Thank you.
4: Good evening, Sarabjit, to you and all the listeners of Akashvani.
2: So, Mr. Sharad, we'd like to start the discussion with you first. To lay out the tone of the program, the discussion, we'd like to understand from you, what does this 7.8 GDP growth figure mean? We are saying that it's a strong number. In fact, the Prime Minister

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

नमस्कार श्रोताओं, जय श्री कृष्णा। रात के 10 बज चुके हैं और 102.7 FM पर हम आकाशवाणी ओबरा से आपसे मुखातिब हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हीना कौशर और आप सुन रहे हैं म्यूजिक गैलरी का खास जन्माष्टमी विशेष फरमाइशी कार्यक्रम। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप आज की यह पूरी संगीत महफिल सजी है हमारे श्रोताओं के खूबसूरत फरमाइशों से, देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से। ईमेल के जरिए हमारे पास गीतों की फरमाइशें पहुंची हैं, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस एक घंटे की सुरीली यात्रा की पहली फरमाइश से। तो श्रोताओं, इस पहले गीत की खास बात यह है कि इसकी फरमाइश दो अलग अलग जगहों से हमारे पास आई है। एक मुजफ्फरपुर से, जिन्होंने भेजा है राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी। और दूसरी जगह से आई है हंसवाहिनी नगर ओबरा सोनभद्र से हमारी प्यारी नीतू श्रीवास्तव ने। इन दोनों श्रोताओं ने एक ही गीत की फरमाइश की है।

श्रोताओं, हमारा अगला जो ईमेल आया है वो मेरठ कैंट से आया है, दिग्दर्शन और कविता गौड़ और उनके सभी मित्रगण का, जिनके नाम इस प्रकार है: संजय ढेंगिया, संदीप मक्कर, दिव्यांशु यादव, अनिल जैन, राधा, नामदेव और दर्शन भाई। इन्होंने कोई भी भजन श्री कृष्ण जी से संबंधित की फरमाइश की है, तो आइए सुनाते हैं इन्हें श्री कृष्ण भगवान का ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा केंद्र से ईमेल से आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। तो हमारा अगला जो ईमेल आया है वो अनिल बी गोंडके जी का है। इन्होंने फिल्म हम साथ साथ हैं फिल्म की गाने की फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हमारी अगली फरमाइश जो आई है वो दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आई है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा। इन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म गीत की फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं इनके फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, हमारा अगला जो फरमाइश आया है वो गांव बिटोडा म्योर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिम विदर्भ से है। भेजने वाले जो श्रोता हैं उनका नाम इस प्रकार है, योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती मस्के, मल्हार मस्के, कविता मस्के, मोहन मस्के, विशाल मस्के, कुशल गोपाल मस्के, श्याम मस्के, गोविंद मस्के और सभी श्रोतागण। इन्होंने फिल्म शोर की ये प्यारे से गीत की फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है आकाशवाणी ओबरा @gmail.com। अपना नाम और शहर लिखना ना भूलें।

श्रोता, हमारी अगली फरमाइश आई है सियेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से, जो भेज रहे हैं शेख जियारुर रहमान। इन्होंने फिल्म लोफर का ये प्यारा सा गीत की फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं उनके फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि संगीत की ये महफिल अभी जारी है। और अगर आपका कोई भी पसंदीदा गीत है तो हमें अपनी फरमाइश ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, akashvaniobra@gmail.com। उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आया होगा। ऐसे ही खूबसूरत फरमाइशों के साथ जुड़े रहिए म्यूजिक गैलरी में। श्रोताओं हमारी अगली जो फरमाइश आई है वो संबलपुर कांकेर से है। भेजने वाले श्रोता है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। इन्होंने गोपाल कृष्ण का तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी, इस फिल्म का ये इन्होंने फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, हमारी अगली जो फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल और डॉक्टर अमन ने, इन्होंने फिल्म बाजार मूवी का ये प्यारा सा गीत सुनने की फरमाइश की है और कालका से भी इसी गाने की फरमाइश आई है। शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बीटा बजाज ने भी की है। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइशों का ये प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ ही आज की कृष्ण जन्माष्टमी विशेष फरमाइशी संगीत महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से अपनी फरमाइशें भेजने वाले हमारे सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद और आपका प्यार ही इस कार्यक्रम की असली खूबसूरती है। अगर आज आपकी फरमाइश शामिल नहीं हो पाई तो निराश मत होइए। अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हमें ईमेल के जरिए भेजते रहिए आकाशवाणी ओबरा @gmail.com पर।

तो इसी के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी अब यहीं समाप्त होता है। एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:59:40 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत

के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05:26 हुए हैं।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद

0: उल्लंघन करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

श्रोता, जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तब एक दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया। वह प्रकाश था कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सही रास्ता हमें आसान नहीं होता, लेकिन सत्य और धर्म के लिए खड़े होने का साहसी मनुष्य को महान बनाता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से श्री द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आंखों देखा हाल सुनेंगे। कृपया कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे एक विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से सुनवा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
1: वंदे कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्ष दायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम

0: क्षण है, मेरो मन आनंद भयो, ब्रज राज ही याचन आयो, अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की, जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे, तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे, एक बार पुनः ब्रज की धरा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहाँ प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओ, यह ब्रज धरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहाँ पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहां से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसके ठीक सामने द्वारकाधीश महाराज जी का श्री विग्रह विराजित है और इस समय विग्रह स्थल के पट बंद है और बहुत सुंदर सा पीत वर्णी ये जो पर्दा आया हुआ है जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक द्वार के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायत जन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन है, वह अद्भुत है, देखने योग्य है। और पुष्टि मार्ग में एक विशेष जो परंपरा है, जिस परंपरा को अपरस सेवा कहा जाता है, इसके तहत वे सभी

किसी बाह्य के व्यक्ति से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं और अंदर श्री विग्रह और श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में एक एक पल को लगा देना चाहते हैं। और आज हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर जितना सुंदर शहनाई वादन हो रहा और एक अद्भुत दृश्य वहां पर देखने को मिला कि यहाँ पर

0: कश एरावत हाथी जो कि श्री हरि विष्णु को मिला था, उन्होंने बाद में इंद्र के मांगने पर उन्हें दे दिया था, और कल्प वृक्ष अंकित हैं। इतनी सुंदर मनमोहक छवि है, भगवान ने मुकुट जो धारण किया है वो अद्भुत और अनूठा है। स्वर्ण जड़ित इस मुकुट में अनेकों माणिक के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और वो सब अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। इतरा इसलिए नहीं रहे हैं कि उनमें हीरे जवाहरात और माणिक के लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए इतरा रहे हैं कि हमारे परमात्मा ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। भगवान ने कंठाहार पहन रखा है, हाथों में चूड़ा है, कमर में करधनी है, उनके आभूषणों के साथ उनकी सज्जा देखने लायक है। जब दृष्टि पड़ती है तो अपलक लोग देखते रह जाते हैं। राधा रानी की आंखों से बरसती हुई करुणा मानो सभी को सम्मोहित कर ले रही है। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखकर लोगों के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। जो सुंदर सजावट की गई है वो भगवान के पुष्प बंगले की है, जिसे कलहंस पुष्प बंगले का नाम दिया गया है। सुंदर हंस बने हुए हैं जो कि श्वेत रंग के पुष्पों से बनाए गए हैं, और गुलाबी रंग के पुष्पों से उनके पंख हैं। नीले रंग के मयूरों की आकृति है, श्वेत गुलाबी और हरे रंग के पुष्प और पत्तियों का सुंदर समावेश किया गया है। एक ऐसी अद्भुत चित्ताकर्षक झांकी है जिसे देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर ठिठक जाते हैं, और ये वातावरण पूरी मथुरा में छाया हुआ है। मथुरा जो कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति और आस्था का एक केंद्र है, वो स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पर जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहां पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं, तालियां बजाते हुए श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है, और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार लें, उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिठकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में लगे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत न हो, धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी, ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं, और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुक्त श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी, एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम, और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादनीय शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और इस समय भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे, और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पलायन, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपने लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं, और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं।

0: होता, लेकिन जो सेवाएं हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्रीकृष्ण जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः तीन मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है, और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन्य कंस का कारागार, हरने लिया जहाँ अवतार ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धा तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में शंख के साथ में जान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ, और उसके बाद सुबह 8 बजे से पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया, और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ, और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प दिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिष्यों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई, और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन व गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है, और जो सामान्यता जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं, और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से, और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है, और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियां बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनुनय विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं, उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा, और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहां जहां भी यहां पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण, आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है, कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड दीप मालाएं ऐसे जगा दिया। और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिगृह कहा जाता था।

0: और आज इसी हरि गृह में हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन, चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों तोरणों रंग बिरंगी झालरों कुमकुमों बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गीय द्वार हो। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हो। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है। उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोंछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झलकार जैसी प्रतीत होती है। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी है क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
1: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई वैसे वैसे जय घोष से गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारिकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारिकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फरचंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं और कैसे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है कृष्ण जन्मभूमि।

0: मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगांव, बरसाना, दिव्य महाराज की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के इस अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है, कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातः काल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू, ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दही दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता है तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है, और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में जो कि जहां पर बल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्ट मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहां पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहां पर ध्यान मुद्रा में है, और यहां पर जय जयकार के नारे, भगवान के लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख तो ले। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक सात पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी ज्योति उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
2: अब वह घड़ी निकट है, इसी के साथ ही माँ भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं।

बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है, उपसंहर विश्वात्मन अदह।

0: निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो ललक है, श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारो जिन ऐसा सुत जायो। आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारकाधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्र मुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा, बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगासा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाएं, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना, और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और धन्य है ये ब्रजवासी, और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं, राधे राधे राधे जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है। वो बाई तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रजमंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद

0: भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कई प्रसंग हैं, तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है, तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित, सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी, क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से, उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक जी। श्रेष्ठ भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय श्री राधे कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती है, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं, और जो भक्तों का आने का क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दे। सुरक्षा प्रहरी सेवाएं तो ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की क्योंकि भक्तों का आने क्रम

0: लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है। और ये पट इस समय बंद है, जो यहाँ पर सेवाएं हैं पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं, और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे लोग और नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री घड़ियां हैं जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें प्राकट्य उत्सव के बाद, जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट। और ये कपाट खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसे राधे का जयघोष हो रहा है, और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग, और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखड़ियां खुल रही हैं, और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहां पर जो दूसरे सेवाएं थे वो आरती कर रहे हैं, और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और सुगंधित द्रव्य भी वहां पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है, और ढोल झांझ मजीरे मृदंग शंख इनका संदेश और अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए जैसे चले, सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं, और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियां खुल चुकी है, वहां पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके, लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है। और इस समय आरती हो रही है, और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवाएं हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है, जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहां पर चल रहा है, और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं, और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार के यंत्रों से, जो ढोल मंजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियां बिखर रही है, और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। जो भक्त जहां भी है ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है। अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं, और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया, उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप है, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए।

जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है। प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति में तालियां, हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में है, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने है, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम भी है, सखा भी है, पथ प्रदर्शक भी है और निष्काम कर्म योगी भी है। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला हैं, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है, और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे, और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा, और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई और छोर कोई सीमा नहीं,
सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण अपने कान्हा की लीलाओं को देख

0: कर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है? यह संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उपंक्ति यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उपंक्ति लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में, यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया है जहाँ पर एक कामधेनु स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेनु विराजित है जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, गुमे चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती हो और प्रातः यहाँ पर आनंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त जन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठाकर कर रहे हैं और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन हैं इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक हैं। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारिक जनों के साथ में आते हैं,

यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ।

0: अभी आप मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे थे श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे थे डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: एक सौ 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 12:15 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।